103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गणेश जी की इस आरती से।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में अभी आपने सुनी ये आरती। आइए अब सुनते हैं अगली भक्ति रचना। ये भक्ति रचना आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा, आकाशवाणी का ये बैतुल केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: समय अपनी निर्बाध गति से चलता रहता है, उसके बीत जाने पर ही हमें उसके महत्व के बारे में पता चलता है। हमारे जीवन में भी तीन अवस्थाएं आती हैं। हर इंसान शैशव, यौवन और वृद्धावस्था के दर्शन एक जीवन में पा लेता है। जहाँ बचपन अबोध और मासूमियत भरा होता है, वहीं युवावस्था जीवन की कर्म भूमि होती है और जीवन के खट्टे मीठे कड़वे अनुभवों को संजो कर रखने वाली परिपक्व अवस्था वृद्धावस्था होती है। इसे संपूर्ण परिपक्व अवस्था भी कह सकते हैं। माथे पर जीवन के उतार चढ़ाव की लकीरें, चेहरे पर खट्टे मीठे अनुभवों की गरिमा, संतोष और आत्मविश्वास भरी आंखें और लंबी

0: अरे मजे से खेलने का गौरवशाली इतिहास हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की कहानी है। उनकी शारीरिक दुर्बलता कर्म की गति कम तो कर देती है और धीरे धीरे स्वास्थ्य की दौलत कम होने लगती है, मगर जीवन के सत्य और दृढ़ चरित्र की वज्रशिला उनके स्वाभिमान को प्रबल करती है और यही बल उनके दुर्बल शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जो जीवन संध्या में संजीवनी बूटी बनकर उनकी रक्षा करती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हर घर के वे अमूल्य आभूषण हैं जिससे घर श्रृंगारित रहता है। परंपराओं और संस्कारों की ये वो पूंजी है जिसे जितना ज्यादा सहेज कर रखा जाए वो उतनी ही निखरती है। बड़े बुजुर्गों की आंखों से बरसता आशीर्वाद का सैलाब घर के हर छोटे बड़े को अपने प्यार के सागर में समेट लेती है। इस सागर से निकलने वाला हर मोती अपने आप में स्वतः ही मूल्यवान और बेशकीमती बन जाता है। आज की पीढ़ी आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति की अनुयायी हो गई है, जिससे दो पीढ़ियों के विचारों और व्यवहारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा है। एक पीढ़ी स्वयं को परिपक्व और अनुभवी सिद्ध करती है और अपने नए पौधों को संरक्षण और मार्गदर्शन देना चाहती है, वहीं दूसरी पीढ़ी आधुनिक और कुसंस्कारी हो गई है। उनमें स्वयं के लिए जीना ही सर्वोपरि हो गया है। दूसरे अर्थों में वे कुछ हद तक स्वार्थी हो गए हैं। माता पिता के त्याग और प्रेम को वे स्वार्थ के तराजू में तौलते हैं। माता पिता की कमाऊ संस्कृति और परिवार की तरफ से लापरवाही भी काफी हद तक जिम्मेदार होती है। आज का कंप्यूटराइज्ड युग की गति भी तेजी से बदल रही है, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को स्टेटस की मशीन समझने लगे हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और तगड़ा पैकेज ही बच्चों की शिक्षा का आधार बन गया है। इस बात की गहराई इंसान तब समझता है जब वो अपने ही खून की खुदगर्जी देखता है, क्योंकि जैसा बोगे वैसा पाओगे वाली बात चरितार्थ होने लगती है। बदलते वक्त ने जीवन शैली और व्यवहारिकता बदल दी है। मॉम डैड की नई संस्कृति ने जहां मर्यादाओं की सीमा रेखा तय कर दी है, वहीं संस्कारों का नवीनीकरण से संबंधों में नई महक का आभास हो रहा है। आज के बड़े सदस्य जानते हैं कि पुरातन दकियानूसी विचारों का आधुनिकीकरण जरूरी है। संबंधों में मधुरता और प्रगाढ़ता लाने के लिए बेमानी दबाव फायदे कानूनों की श्रृंखला में शिथिलता लाना जरूरी है। इसके लिए व्यवहार कुशल होने के साथ अंडरस्टैंडिंग भी निभाना आवश्यक है। अहम, अकड़, अनावश्यक कायदे और हठ जैसी भावनाओं से रिश्तों में केवल कड़वाहट ही पनपती है। समय के साथ सास बहू के संबंध मित्रवत होते जा रहे हैं। दामाद को घर के बेटे का स्थान दिया जा रहा है। अपने बड़प्पन और गौरव को कायम रखने के लिए समझदारी और प्रेम ही बहुत बहुमूल्य विकल्प है, जो दो पीढ़ियों के रिश्तों में मधुरता और ऊष्मा बनाए रखते हैं। दोनों पीढ़ियों को यह जान लेना चाहिए कि वे वही बोए जो वे स्वयं पाना चाहते हैं। विदेशी संस्कृति के गलत संस्कारों का अंधानुकरण करने के पहले अपने पीछे की जड़ों को अच्छे संस्कारों, प्रेम, मर्यादाओं और सुविचारों की खाद पानी से पोषित और पल्लवित करें। आधुनिकता की आंधी इस स्नेह सिंचित पौध को संस्कारों की जड़ में जकड़कर मजबूती प्रदान करें, ताकि समय की आंधी और आयातित संस्कृति का तूफान इस पौध को हिला न सके और सही पौध कल बरगद बनकर अपनी शाखाओं को सुदृढ़।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये बैतुल केंद्र है। लीजिए अब प्रसिद्ध है श्री राम चरित मानस गान, स्वर है रविन्द्र साठे और साथियों का।

सागर तट पर वानरों का विशाल समूह संपाति नामक गिद्ध से सीता के लंका की अशोक वाटिका में होने का पता पा चुका है। वृद्ध संपाति ने उन्हें यह भी बता दिया है कि जो सामने 400 कोस के विस्तार में फैले समुद्र को लांग सकेगा वही श्रीराम का कार्य संपन्न करने में सफल होगा। अपनी बात समाप्त कर जब गिद्ध चला गया तो वानरों को अपनी अक्षमता की प्रतीति हुई। ऋक्षराज जामवंत वृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर में पहले वाला बल नहीं है। अंगद को सागर पार चले जाने का आत्मविश्वास तो है परंतु लौट आने में संदेह है। किंतु वो तो वानर सेना के नायक हैं, उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है। जामवंत ने तब पवन पुत्र हनुमान के बल

तथा सक्षमता का स्मरण दिलाया। बल में वे पवन के समान हैं और उसी प्रकार बुद्धिमान, विवेकशील तथा ज्ञान विज्ञान के भंडार। ऐसा कौन सा काम है जो वे नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान ने पर्वत सा आकार बना लिया। सोने जैसा वर्ण और शरीर का तेज उनकी सक्षमता का आभास देते हैं। उन्हें स्वयं अब इस बात का भान हुआ कि सामने लहराते सागर को वे खेल खेल में लांग सकते हैं।

रविन्द्र सारथी और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे के आर पाटिल और साथियों के गाए आदिवासी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन से।

केआर पाटिल और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंजनी अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। 7 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से

0: भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीएपीए पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आइए अब आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करा दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से। यादों के झरोखे से क्लासिक फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे 7:20 पर।

सुबह सवेरे कार्यक्रम का समय होगा 7:50। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर रिले करेंगे मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। 8:30 पर बच्चे सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम फुलवारी। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा जल्दी सोना जल्दी उठना, और साथ ही आपके लिए होंगे कुछ फिल्मी गीत। 9 बजे से आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम होगा प्रातः 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो FM बैतूल। 11 बजे से आप पुनः सुन सकते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार होंगे दोपहर 2:10 पर आकाशवाणी भोपाल से। हिंदी में समाचार 2:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 2:30 से पुनः आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का। 5:30 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात में आज आप सुनेंगे सफलता के लिए व्यक्तित्व विकास आवश्यक। सैर सपाटा में जानेंगे सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी की सैर करें इस बारे में। सक्सेस टिप्स में आज आप जानेंगे अच्छी संगत और नेटवर्किंग से मिलती है सफलता इस विषय पर, और साथ ही आपके लिए होंगे कुछ फिल्मी गीत। 6:00 प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम विवरण माटी की स्वर। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:05 पर। कलाकार होंगे संदीप उइके और साथी। 6:30 पर सबरस कार्यक्रम। 6:50 पर 7:10

मिनट पर प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी भोपाल से। 7:20 पर पेश करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज की बात में आज आप सुनेंगे कृषि के आधुनिक तौर तरीकों को जाने। सामयिक कृषि चर्चा होगी, सोलर उपकरण अपनाएं कृषि लागत घटाएं इस विषय पर। साथ ही सुनेगा लोकगीत, बाजार भाव, जानिए मौसम का हाल। रात 8 बजे प्रस्तुत करेंगे शीर्षक संगीत। समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की आप सुनेंगे 8:15 पर आकाशवाणी भोपाल से। कार्यक्रम साज और आवाज, इसका समय होगा 8:30। 8:45 पर रिले करेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। 9 बजे से आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। एक फिल्म से ये कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, स्वर होगा गुलाम अली का। 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे, अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से। और सभा का समापन होगा 11:10 पर। ये थी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। सात बजकर 10 मिनट होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। उषा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और

0: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बेढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30 से 35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
1: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्रिशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसायटी सीधी की ओर से परिजनों को 20-20 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये बैतुल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। लीजिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले के गाए इस गीत से। गुलजार के लिखे बोल है राहुल देवबर्मन का संगीत है, फिल्म है नरम गरम।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अगला गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में लिया है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है रोटी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म अपनापन से लिया है। किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है। आइए सुनते हैं।

अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में लिया है। नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और फिल्म है कल आज और कल।

0: आती हो?
1: मुझे भी आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: कार्यक्रम का अंतिम गीत लिया है अनोखी अदा इस फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज है, मजरी सुल्तानपुरी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: सुबह सवेरे कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं आइए पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाए अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
3: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।
4: मेरे साथ साथ आसमान से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला।
2: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
3: अपने विज्ञापन, प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाए विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन भी।

0: बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

0: 3472 और मोबाइल नंबर है 9755553676।
1: युवाओं के अंतर्मन की आवाज, युवाओं के मुद्दों की वाणी, रोजाना सुनिए कार्यक्रम युववाणी, बातें चारों दिशाओं की, युवाओं की नई नई आशाओं की।

0: बातें खेल साहित्य और विज्ञान की।
1: भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बना।
2: फेक न्यूज का मकरजाल युवा कैसे करे जांच पड़ताल पर चर्चा करेंगे।
0: बातें करियर और सपनों की ऊंची उड़ान की।
3: आज की पहली रोजगार सूचना है उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों की। इसी तरह अगला कोर्स है स्पिरिचुअल थियोलॉजी का।
0: बातें सामान्य ज्ञान और धरती के सम्मान की।
4: दोस्तों हमें पॉलिथीन को हटाना है और धरती को बचाना है। जय वसुंधरा।
0: कार्यक्रम युववाणी यानी युवाओं के मन की वाणी। ये कार्यक्रम सुनिए प्रतिदिन शाम 5:30 बजे FM 103.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को। साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियाँ, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
1: पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
0: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
2: फुलवारी बच्चों की मनोहारी, आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, जिसमें रविवार की सुबह महत्वपूर्ण विषयों पर रहती है चर्चा जारी। नहीं भूलते हम चर्चा के बीच सुनवाना बच्चों को मीठे मीठे गीत। इतना ही नहीं है काफी, नन्हे मेहमान में लेकर आते किस्से कहानियाँ हमारे नन्हे साथी। देश दुनिया में हमने है ठाना, बच्चों को बताना है दुनिया का ताना बाना। फुलवारी बच्चों की मनोहारी, आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, रविवार सुबह 8:30 बजे।
0: आइए अब सुनते हैं ये देश गान।

0: सुबह सवेरे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आठ बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर बचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग

0: प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सबके लिए सामाजिक

0: अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजरायल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
2: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderbir Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
6: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they'll exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Suparna Sakya, Priya Mandal, Akashwani News, Delhi.
5: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue.

छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं फुलवारी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का। आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ है आपकी दीदी बबीता अतुलकर। बच्चों, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो आप सभी दिन भर टीवी देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, देर रात तक जागते होंगे और सुबह देर से उठते होंगे। सही कहा ना मैंने? इस सब के बीच आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, वो ये कि जब आप देर रात में देर तक जागते हो और सुबह देर से उठते हो तो आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आंखें भारी भारी लगती है और शरीर थका हुआ महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि थोड़ी देर और सो जाए, है ना? बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को आराम नहीं मिल पाता और दूसरी वजह ये भी है कि नींद पूरी नहीं हो पाती। बच्चों, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बच्चों अब अवगत करवाते हैं आपको हमारे आज के विषय से, जल्दी सोना जल्दी उठना। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय। साथ ही मुलाकात करेंगे हमारे छोटे मेहमान से, जो हमें सुनवाएंगे उनकी पसंद की कुछ कविताएं। अब बात करते हैं हमारे आज के विषय की। बच्चों हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है कि बिना रुके लगातार

0: करता रहे। जिस तरह से समय समय पर मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी और हमारे दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। जब हम समय पर सोते हैं तो हमारा शरीर अंदर से खुद को मजबूत बनाता है, हमारी आंखों को आराम मिलता है, दिमाग शांत होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। लेकिन अगर हम देर रात तक मोबाइल चलाते रहे, टीवी देखते रहे या जागते रहे तो शरीर थक जाता है, फिर सुबह उठने में परेशानी होती है और पूरा दिन सुस्ती महसूस होती है। बच्चों, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका मन खुश और तरोताजा रहता है, आपके पास बहुत समय होता है जिससे कि आप अपने सारे काम आराम से कर सके। आप में से बहुत से बच्चों को की ये कंप्लेन रहती है कि जो कुछ भी वे पढ़ते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इसका एक कारण गलत दिनचर्या भी होती है। बच्चों, हम देर रात तक जागते हैं तब हमारा दिमाग थक जाता है और थका हुआ दिमाग किसी भी चीज को याद नहीं रख पाता। लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं तो चीजें जल्दी समझ आती है और लंबे समय तक याद रहती है। यही वजह है कि आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको सुबह उठकर पढ़ाई करने की सलाह देते हैं। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखें कि अच्छी आदतें धीरे धीरे बनती है। यदि किसी को देर से सोने और देर से जागने की आदत है तो ये आदत एक दिन में नहीं बदलेगी। बच्चों, कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बच्चों, अंतराल से पहले हम आपसे कह रहे थे कि अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा समय लगता है, परंतु रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश की जाए तो ये आदतें बदली जा सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रात में मोबाइल चलाते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी देर और वीडियो देख लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, लेकिन ये जो थोड़ी देर होती है ना, वो धीरे धीरे बहुत देर में बदल जाती है और फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। दिन भर सुस्ती रहती है, साथ ही आंखों और शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बच्चों, समय बहुत कीमती होता है, एक बार निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आता, इसीलिए हमें इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, वे अपने दिन का सही उपयोग कर पाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। बच्चों, इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये मधुर सा गीत।

0: बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
1: और दूसरा
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: बच्चों जल्दी उठना और जल्दी सोना केवल एक आदत नहीं बल्कि अच्छा जीवन जीने का तरीका है। ये आदतें हमें अनुशासन सिखाती है जिससे कि हम अपने कामों को समय पर खत्म करें। हम समय की कदर करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है और यही अच्छी आदतें हमें एक सफल इंसान बनाती है। एक रिसर्च के अनुसार कई मनोचिकित्सक

ये मानते हैं कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए सोने के समय को निर्धारित करना जरूरी है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। नींद की कमी कई बार मूड स्विंग्स की समस्या का कारण बनती है, साथ ही इससे इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है। इसी तरह एक और रिसर्च में ये पाया गया कि समय पर सोने वाले बच्चों का प्रदर्शन पढ़ाई और दूसरे एक्टिविटीज में काफी ज्यादा अच्छा था। वे टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनते, प्रश्न करते, यहाँ तक कि उन बच्चों की याददाश्त भी काफी अच्छी थी। वहीं दूसरी ओर जो बच्चे देर तक जागते और सुबह देर से उठते, उन बच्चों को क्लास में बैठे बैठे उबासी और सुस्ती रहती। इतना ही नहीं, उन्हें तो ये भी समझ नहीं आता कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे, और धीरे धीरे वे अपनी पढ़ाई में कमजोर होते गए, साथ ही उनका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं रहा। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता केवल ज्यादा पढ़ाई करने से नहीं मिलती, बल्कि अच्छी आदतें अपनाने से मिलती है। तो आज से ही खुद से ये प्रॉमिस करिए कि रोज रात को आप जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, जिससे कि आप अपने हर सपने को साकार कर सके। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की चर्चा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो सुनते हैं ये गीत।

0: इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। मिलवाने जा रहे हैं हम आपको हमारे छोटे मेहमान से, और जानते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मेरा नाम गीतांजलि बड़े है। मैं जीन दनोरा में रहता हूँ।
0: गीतांश, आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो?
1: मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम जेएस पब्लिक स्कूल चिचोली है।
0: ओके गीतांश, ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे कजन्स, मेरी चाची और मेरे दादाजी हैं।
0: तो गीतांश, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो?
1: हाँ, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ।
0: ओके अच्छा गीतांश, जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो आप तो बहुत ज्यादा मस्ती करते होंगे, बहुत मतलब पूरे टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते होंगे, है ना?
1: नहीं, कभी मैं पढ़ता भी हूँ और कभी थोड़ी मस्ती भी।
0: ओके गीतांश, जैसे आपको पता है कि अभी बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही है, तो आप आउटडोर गेम्स खेलते हो, बाहर जाते हो खेलने के लिए?
1: नहीं, हम लोग इंडोर गेम खेलते हैं।
0: अच्छा, तो आप घर में ही खेलते हो, है ना?
1: हाँ,
0: ओके तो कौन कौन से गेम्स खेलना पसंद है आपको?
1: जैसे मैं खेल लेता हूँ कभी चेस, लूडो और सांप सीढ़ी और कैरम भी।
0: ओके तो ये तो सारे इंडोर गेम्स ही है ना?
1: हाँ,
0: वेरी गुड गीतांश, आपको कोई कविता आती है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हो?
1: मुझे एक कविता आती है जिसका नाम है गंध गुणों की बिखराए। हे जगत नियंता यह वर दो, फूलों सा कोमल मन पाए। परीत होधे सदा अपना, पल पल इस जग को महकाए। हम देवालय में वास करे या शिखरों के ऊपर झूले, लेकिन जो शोषित वंचित है उनको भी हम कभी नहीं भूले। हम प्यार लुटाए जीवन भर, सबका ही जीवन सरसाए। परहित होधे सदा अपना, पल पल इस जग को महकाए। हम शीत धूप बरसातों में कांटों में कभी ना घबराए। अंदरों पर मधु मुस्कान रहे चाहे कैसे भी दिन आए। सबको अपनापन बाट बाट हम गंध गुणों की बिखराए। परहित होधे सदा अपना, पल पल इस जग को महकाए। जीवन छोटा हो या बड़ा उसका कोई अर्थ नहीं होता। जो औरों को खुशियाँ बांटे वह जीवन व्यर्थ नहीं होता। यह बार हमारा याद रहे, हम भी कुछ ऐसा कर जाए। परहित होधे सदा अपना, पल पल इस जग को महकाए। मेरी दूसरी कविता का नाम है कोयल। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसमें ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बताओ क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बदला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। मेरी आखिरी कविता है किरण। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है। घर में वन में खेत बाग में सबको किरण जगाती है।
0: अरे वाह गीतांश, आपने तो हमारे श्रोता को बहुत अच्छी कविताएं सुनाई है। तो हमारे आकाशवाणी केंद्र में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो बच्चों, ये थे हमारे आज के छोटे मेहमान गीतांश झरवड़े, जिन्होंने हमें बहुत प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्ति का वक्त हो चला है, लेकिन दोबारा फिर होगी आपसे भेंट एक

नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब दीजिए विदा अपनी दीदी बबीता अतुलकर को। जय हिंद।

9 बजने को है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से बस कुछ ही पलों में।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजनू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का

सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

0: तुझे।
1: दोस्तों, मजनू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और एआर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: सकती हूँ।
1: फिल्मों में मजरू साहब के उल्लेखनीय योगदान के लिए 1993 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

24 मई सन 2000 को निमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटिया का। दतिया जिले में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी और लू जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद और हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन करके एवं पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। बाहर जाते समय भी अपने साथ पानी रखें और गर्मी के दिनों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें धूप में घर से बाहर न निकलने दें और समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। दतिया जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। युवाओं से दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में 28 मई को एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों के सम्मान, मनोरंजन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल जिले में की गई है। रेडक्रॉस भवन में संचालित आनंद घर डे केयर सेंटर में वृद्धजनों के लिए सप्ताह के सातों दिन अलग अलग विभागों के समन्वय से विभिन्न रचनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक जांच और छापामार कार्यवाही बीते दिनों की गई। टीम के द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वे बिना अनुमति और बिना वैध परिपत्र के खनिज का अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने ग्राम इंदरगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 घन मीटर रेत जब्त की। बाद में इन अवैध रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। दतिया स्थित जिला जेल में मुलाकात कक्ष में लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। स्थापित हेल्प डेस्क में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लीगल एड डिफेंस काउंसिल में नियुक्त अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुलाकात कक्ष में बंदियों के परिजनों को मौके पर ही कानूनी सलाह और सहायता तथा केस की जानकारी और अपने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दतिया जिले से अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग जाति के 532 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 91,59,000 रूपये का भुगतान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला दतिया के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर बीते दिनों सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सटीक मकान सूचीकरण न केवल जनगणना के लिए बल्कि भविष्य में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों और फील्ड कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसेमंद रिकॉर्ड बने। जिला स्तरीय परियोजनाओं, न्यायालयीन मामलों में समन्वय और विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्रा ने मॉनिटरिंग सेल की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन व्यवस्थाओं और जिला स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण हों। श्री चंद्रा ने बताया कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों की सहमति से बैंकिंग, सिविल, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता विवाद, रेरा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण आदि जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि संपर्क अभियान में बिलों का सुधार किया जा रहा है। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल।
2: हेलो एफएम बैतूल,
3: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए इस हफ्ते के फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम बैतूल का दूसरा और शेष भाग। हेलो एफएम बैतूल।
4: सर मैं राहुल योरे बोल रहा था।
3: राहुल जी बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: सर मैं ग्राम माजरवानी से।
3: माजरवानी से बात कर रहे हैं, तो ग्राम माजरवानी के क्या हाल है और आपके क्या हाल है?
4: बढ़िया है सर, गर्मी पड़ रही है सर बहुत ज्यादा।
3: बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी के दिनों में आप क्या कर रहे हैं?
4: सर कहीं कुछ नहीं सर, हम घर पे रहते हैं। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो सर कहीं काम वाम पे भी नहीं जाते, घर पे ही रहते सर।
3: वैसे आप क्या करते हैं?
4: सर मजदूरी पे जाते हैं सर, पर अभी गर्मी पड़ रही ज्यादा तो सर कहीं नहीं जा रहे हैं।
3: हाँ सेहत का ख्याल तो जरूर रखिएगा। और बताइए, हमारे प्रोग्राम रेडियो आप सुनते हैं ना?
4: हाँ सर सुनते हैं सर।
3: हमारे यहाँ से कई तरह के प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, जरूर सुनिएगा हेलो एफएम बैतूल। प्रोग्राम में आज आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
4: सर आज सुना देना सर, कुमार सानू का हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे वाला।
3: बारूद फिल्म से आपको ये गाना सुना है। राहुल जी को सुनवाते हैं आज के प्रोग्राम में, उन्हीं की पसंद का ये गाना।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन।
0: ग्राम बछोड़ा कितना बड़ा गांव है ये?
1: जी यहाँ पे करीबन 1000 लोगों की आबादी है सर। यहाँ पे काफी स्वच्छ सुंदर और साफ गांव है हमारा। जी काफी बहुत ही अच्छे लोग हैं, एक दूसरे से मिलन वाले हैं, किसी भी सुख दुख में मतलब सभी साथ खड़े रहते हैं। जी हाँ, और आपको बताऊँ उसके साथ में हमारा महाकालेश्वर बाबा मंदिर है उज्जैन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी वहाँ पे बहुत सारे मतलब दर्शन करने के लिए दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं। और सावन के महीने में तो मतलब महाकालेश्वर बाबा के दरबार में काफी भीड़ लगी रहती है।
0: आप जाते हैं दर्शन को?
1: जी हाँ बिल्कुल जाते हैं सर। और जैसे कि हम कहीं अगर कुछ काम होता है ना, जाना होता है उज्जैन, तो फिर भी मतलब बाबा के महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करके आते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और बताइए हमारे प्रोग्राम आपने कहाँ सुना?
1: जी मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुनता हूँ सर मैं, हेलो एफएम बैतूल कार्यक्रम। और आपको बताऊँ मैंने है ना, जैसे कि अभी मोबाइल ऐप से आने लगी है ना कार्यक्रम, तो हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए।
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो
1: और मतलब श्रोताओं की भी संख्या काफी बढ़ चुकी है।
0: बिल्कुल। तो प्रेम सिंह जी आप वहाँ क्या करते हैं?
1: जी सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, मेरे पास में 3 बीघा खेत जमीन है। जी हाँ, तो उसमें फसल लगाते हैं, जैसे कि लहसुन और गेहूँ की फसल लगाते हैं, और फिर बरसात में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है हमारे यहाँ पे।
0: तो सोयाबीन की फसल की तैयारी कर रखी होगी आपने, है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल, सोयाबीन की फसल जुलाई में मतलब मई और जून के बीच में जब बारिश होगी ना, 20 जून के बाद में, तो फिर यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी।
0: और बताइए आज कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: जी सर फिल्म का नाम है आपकी कसम, और गाने के बोले करवटे बदलते रहे सारी रात हम।
0: अच्छा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।
1: जी बिल्कुल।
0: आपके परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है?
1: जी मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 3 बच्चे हैं मेरे। बड़ी लड़की का नाम है बिंदिया, उसके बाद में कृष्णा सिंह सिसोदिया, और आखिरी में छोटी है साक्षी।
0: चलिए आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं प्रेम सिंह जी, और लीजिए प्रोग्राम में सुनवा।

0: हेलो एफएम बैतूल,
1: आदरणीय श्रीमान जी को प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं सुनील झा बोल रहा हूँ भोपाल से।
0: सुनील झा जी बात कर रहे हैं भोपाल से?
1: जी सर।
0: तो सुनील झा जी कैसे हैं आप?
1: बस सर बढ़िया है।
0: भोपाल में आप हमारे कार्यक्रम सुनने का समय निकालते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, आपका नियमित श्रोता हूँ।
0: बड़ी अच्छी बात है।
1: और आपके यहाँ कॉल भी लगाते रहता हूँ।
0: और बताइए आप वहाँ क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सर, सिलाई का काम, टेलरिंग का।
0: दुकान है आपकी या?
1: नहीं सर, मैं घर पे ही रखता हूँ दुकान वालों से, और घर पे भी काम आ जाता है ग्राहकों का।
0: अच्छा।
1: और दुकान वालों से भी है, तो उनका भी दोनों का चलता रहता है।
0: अच्छा, तो आप अपना काम करते हुए रेडियो सुनते रहते हैं ना?
1: जी जी जी बिल्कुल, न्यूज सुनते रहते हैं रेडियो।
0: गाने कैसे पसंद करते हैं सुनील जी?
1: नहीं, गाने सभी ज्यादातर पुराने गाने हैं, और जो 80-90 के गाने हैं वो पसंद, नए थोड़े कम पसंद आते हैं।
0: तो आज आपकी पसंद का गाना कौन सा है सुनील जी?
1: जिंदगी और तूफान फिल्म का है, एक हसरत थी आंचल का मुझे प्यार मिले।
0: अच्छा, मुकेश जी की आवाज में।
1: जी जी,
0: बहुत प्यारा गीत चुना है आपने सुनील जी। परिवार में कौन कौन है आपका?
1: जी सर, हमारे बीवी में बच्चे हैं तन्मय झा, और लड़की का नाम है अनादि झा।
0: बच्चे पढ़ते हैं?
1: जी जी, वो टेंथ में है, वो लड़की अभी फोर्थ में आई है।
0: अच्छा,
1: वो भी सुनते रहते हैं, वो भी सब यहाँ चलता रहता है, घर पे ही रहते हैं, तो वो भी बस।
0: बड़ी अच्छी बात है।
1: हमारा भिंड जिला पड़ता है।
0: अच्छा।
1: भिंड जिले में हमारा गांव बड़ा है।
0: अच्छा।
1: तहसील में नाम है अंतर्गत।
0: अच्छा अच्छा।
1: लेकिन सर रेडियो का शौक है, तो रेडियो हर जगह के जो आकाशवाणी केंद्र है सब जगह फोन लगाते रहते हैं और सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, तो आप वैसे भिंड के हैं?
1: हाँ सर, भिंड जिला पड़ता है हमारा।
0: अच्छा
1: सर, हमारी थोड़ी बच्ची भी बैठी हुई, बोला मुझे भी बात करा दो। बोला
0: बिल्कुल।
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते। अब अपना नाम तो बताओ।
2: अनादि।
0: अनादि, तो अनादि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: फोर्थ
0: क्लास में पढ़ती हैं, तो अभी तो छुट्टी होगी। तो अनादि और अनादि के पिताजी को आज के प्रोग्राम में सुनवाते हैं।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो एफएम बैतूल।
1: मैं बैतूल बाजार से नरेश सोनी बोल रहा हूँ।
0: नरेश जी बात कर रहे हैं बैतूल बाजार से?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: तो नरेश जी कैसे हैं आप?
1: फाइन मस्त।
0: क्या करते हैं आप नरेश जी?
1: मैं फोटोग्राफी करता हूँ।
0: फोटोग्राफी करते हैं?
1: जी
0: हाँ। अरे ये तो बड़ी कलाकारी का काम है, कब से कर रहे हैं आप?
1: मैं करीब 35 साल हूँ।
0: 35 साल से हो गए, यानी आपको तो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा इस काम का।
1: जी हाँ।
0: तो काम काज अच्छा चल जाता है बैतूल बाजार में फोटोग्राफी का?
1: ठीक है चलता है।
0: और बताइए हमारे प्रोग्राम सब सुनते हैं?
1: पूरे प्रोग्राम सुनते हैं, जो सुबह 7 बजे से 6 बजे से लेके 11 बजे तक के जो है एफएम पे पूरा सुनते
0: हैं। चलिए आज आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: मेरी पसंद का गाना है सासू तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है,
0: फिल्म सौतन से।
1: हाँ।
0: तो फिल्म सौतन का ये गाना सुनवाएंगे।
1: अपने साथियों का नाम गिनाना चाह रहा हूँ। गणपति सूर्य बैतूल बाजार से, नथु टेलर, मुन्ना बेगी, मोहित सोनी, मयूरी सोनी, शिवान सोनी, रेखा सोनी और सभी साथी लोग।
0: चलिए सभी को सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये गाना।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हेलो, FM बैतूल।
6: नमस्कार सर।
5: नमस्कार
6: सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
5: जगदीश जी, कैसे हैं आप?
6: बहुत बढ़िया सर, आप बताओ कैसे जी?
5: हम भी अच्छे हैं। आप हेलो FM बैतूल कार्यक्रम बहुत दिनों से सुन रहे हैं ना?
6: हाँ जी, सुनते रहते हैं।
5: तो इस प्रोग्राम में आज आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
6: सर जी, आज है विश्व चाय दिवस और विश्व चाय दिवस पे ही एक गीत है रफी साहब जी का गाया हुआ। फिल्म है जी संजोग, 1961 की ये फिल्म है। उस गीत के बोल मैं थोड़ा सा गुनगुना के बताऊंगा।
5: जी जी बिल्कुल।

0: गया आ गया मैं सैर करके आ गया।
1: बहुत अच्छे जगदीश जी, बहुत अच्छे। चलिए आपको ये गाना सुनवाते हैं आज के प्रोग्राम में, मगर उससे पहले बताइए कि आपके दिन कैसे कट रहे हैं? गर्मी पड़ रही है आपके क्षेत्र में?
0: गर्मी तो सर बेइंतहा जहाँ अब पंजाब में पड़ रही है, पर ये अभी चलो भगवान का दिया हुआ जो भी है उसे हम प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आज गर्मी है तो कभी बरसात भी जरूर होगी।
1: उम्मीद रखिए बरसात भी अच्छी होगी। चलिए प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का।

है जन्नत में क्या होगा, देखे यहाँ लाखों वहाँ तो एक खुदा होगा, आदम भी आदम है।

यारो इधर आओ, मुझसे न घबराओ, मुझको खिला सकते नहीं तो

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हाँ भैया नमस्ते, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया।
0: बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: गर्मी पड़ती है आपके क्षेत्र में?
1: बहुत गर्मी है भैया।
0: अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं?
1: अब खेती बाड़ी का मूल काम है भैया, लेकिन अब गर्मी के दिनों में 2-3 महीने थोड़ा सा आराम मिल जाता है।
0: लेकिन तैयारी तो रखनी पड़ती है।
1: हाँ जी, जोताई करके छोड़ दिए हैं भैया।
0: आने वाले दिनों में क्या बोएंगे आप?
1: धान लगाएंगे थोड़ा।
0: धान की तैयारी कर रखी होगी आपने, है ना?
1: जी जी जी।
0: प्रोग्राम तो आप सुन ही रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: आज के प्रोग्राम में कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दिल लगी ने दी हवा सुनवा देंगे दोस्ताना।
0: दोस्ताना फिल्म से। चलिए आपको ये गाना सुनवाएंगे। योगेश जी आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: अब मुझे लगभग 22-23 साल हो गया भैया, अभी 35 साल होने को है मुझे।
0: अच्छा, यानी बचपन से ही रेडियो सुन रहे हैं।
1: जी जी। ये शौक ऐसा रहा है भैया, वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुँच चुका है।
0: बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: चलिए जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा और प्रोग्राम में योगेश जी को सुनवाते हैं।

0: हेलो एफएम बैतूल
1: सर, मैं रियान से राठौर बोल रहा था।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रियांश?
1: सर मैं बैतूल से बोल रहा हूँ।
0: बैतूल में कहाँ से?
1: सर कुमारिया।
0: अच्छा, कैसे हैं आप रियांश?
1: सर मैं अच्छा हूँ। हमें एक गाना सुनना था।
0: हाँ जी बताइए रियांश, कौन सा गाना सुनवाए?
1: सर गोरी कन्हैया वाला।
0: फिल्म आज का अर्जुन से?
1: यस सर।
0: आपकी उम्र क्या होगी?
1: उम्र सर 15 साल।
0: 15 साल के बच्चे हैं आप। ये गाना आपने पहली बार कब सुना?
1: ये गाना अभी नहीं सुना।
0: तो चलिए आज के प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं यही गाना।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़।
0: बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं सुरेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: हम भी अच्छे हैं, बहुत दिनों से हेलो एफएम बैतूल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ना?
1: जी सर, जी सर। और गर्मी कैसे है सर उधर?
0: हमारे यहाँ गर्मी तो अच्छी खासी पड़ रही है, आपके यहाँ गर्मी कैसी है?
1: यहाँ तो 46-47 डिग्री है सर, तापमान बहुत तेज गर्मी है सर।
0: अच्छा,
1: ऐसे मौसम में घर से निकलना दुर्लभ हो गया है सर।
0: सेहत का ख्याल रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं वैसे?
1: मैं तो जैसे सारथी हूँ, ऐसे मेरा काम भी सारथी का है सर। मैं वाहन चालक हूँ, गाड़ी चलाता हूँ सर, ड्राइवर हूँ। 27-28 साल से वाहन चला रहा हूँ सर। और पर्यटकों को सब घुमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, अदर स्टेट सब ले जाते रहता हूँ सर। और असम है, अपना गोवा है, इधर नैनीताल है, आपके एमपी है, उधर सब जाते रहता हूँ सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रोग्राम भी सुनते रहिए। और आज के प्रोग्राम में आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: सर तीसरी मंजिल का है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में है। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हेलो FM बैतूल।
5: जी सर, केशवराव शमरे बात कर रहा था सर, इंदौर से।
4: केशवराव जी बात कर रहे हैं इंदौर से।
5: जी
4: कैसे हैं आप?
5: तो बढ़िया सर, गर्मी बहुत चल रही है सर अभी।
4: इंदौर में गर्मी चल रही है।

तो श्रोताओं, ये था इस हफ्ते का फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम बैतूल। उम्मीद है श्रोताओं आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है हफ्ते में गुरुवार के रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, और फोन नंबर्स हैं 07141231944 और 07141234722। तो याद रखें, रिकॉर्डिंग का समय हफ्ते में गुरुवार के रोज, समय सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, और फोन नंबर्स हैं 07141231944 और 07141234722। आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया अशोक सोनारे और गिरीश कमल चौहान ने। तो अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: हेलो एफएम बैतूल,
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल।
2: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को।
3: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
2: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही की पसंद के चंद गीत।
4: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
2: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत
1: FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: मंदाकिनी जी, सन 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
1: सास बहू और हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
1: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहू और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रीकर।
0: आइए सुनते।
2: हेलो फरमाइश।

0: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है, देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू
1: हाँ।
0: मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने? कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू
1: हाँ।
0: डायरी लाकर दे मेरी।
1: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही हैं ना वो होगा नहीं। हाँ
0: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है।
1: हुँ?
0: अच्छा बता कौन सा काम है?
1: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
0: है।
1: अब हम तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
0: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी? किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश, बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
1: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और ना ही लगेगा, देख लेना। हाँ
0: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर, पर हमेशा देर कर देती है तू।
1: हाँ सासू माँ मैं देरी करती नहीं, देर हो जाती है आपकी पुकारने से पहले।
0: दबा हो जा, स्टार्टिंग की
1: जल जाती है।
0: दबा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02

0: 5, 4, 6, 7।
1: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
2: The number you have dialed is busy. Please call after some time.
1: कहा था ना हमने सासुमा, ये फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगी ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया, सासुमा एक आइडिया। एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
3: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर?
1: क्यों?
4: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर?
1: क्यों क्यों क्यों क्यों
4: क्यों क्यों क्यों क्यों? बड़ा कौन?
1: आप।
4: सास कौन?
1: आप।
4: तो सुनीता कौन?
1: आप।
4: तो अनाउंसर बनेगा कौन?
1: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट, फिर से कर दे। अच्छा बताइए, सुनीता देवी कौन?
3: मैं।
1: और विवेक भारती की फैन कौन?
5: मैं।
1: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है?
5: मैं।
1: तो कॉलर बनेगा कौन?
5: मैं।
3: करमजलि दास पीटी। ऐसा नहीं होगा। देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
2: अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने?
1: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है। वो कहती है उन्हें विवेक भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
3: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर।
4: अम्मा को विवेक भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
2: तुम लोगों से तो बस बहस करवा लो।
1: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना? चलिए ना पिताजी, प्रैक्टिस करते हैं, करते हैं ना।
2: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
1: अरे पिताजी, वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर। ठीक है, हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
2: ट्रेन ट्रेन
4: ट्रेन ट्रेन
2: ट्रेन
4: ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
1: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हम ना आज विविक भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं। बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आपके अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं?
2: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
1: पिताजी वो हेलो फरमाइश
2: पति को बोलने देती है ना, ससुर को ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
4: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर। इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला?
2: तुम बीच में कहाँ से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरी करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
4: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
2: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा। स्टूडियो के बाहर का नजारा यहाँ से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ। एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद है जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंगटोन बजती है।
4: सुनो जी,
2: हेलो,
4: सुनो जी, चुप रहो, बकवास बंद करो। ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने। सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
2: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
4: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
1: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
2: शट अप
4: शट अप।
3: बहुत हो गया बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध

0: आरती के अंदर हेलो फरमाइश के स्टूडियो में और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या है? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: देवा, मैं किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही। काय झालं, तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
1: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं। मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
0: जलगांव से, पानी गांव से।
1: पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कधीच वाजत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
0: क्या
1: मैं कितनी बार फोन करता है?
0: अरे
1: यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
0: क्या
1: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू?
0: अरे
1: यानी कि आपने अपने मशीन को क्या कर रखा है?
0: ये अनुवाद भी कर रही है।
1: अरे तुम्हारा लोकांना त्रास द्यायला आवडत का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
0: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना?
1: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों?
0: वो क्या है ना,
1: बहाने बनाऊंगा का।
0: क्या है ना,
1: यानी कि बहाने मत बनाओ।
0: हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: अरे आधी सांगितलं होतं मी।
0: फिर मराठी?
1: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
0: अरे अनुवाद नहीं कर दिया।
1: मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
0: अरे
1: मृणमयी नहीं, जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ। समझा।
0: मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
1: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
0: बापरे,
1: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
0: अरे सुनिए, मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
1: आता तुम ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
0: अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है जी।
1: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
0: अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
1: बहुत बकवास है, एकदम बकवास जा रहा है। एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है, यानी कि अब लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो? कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
0: अरे
1: क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी, मेरा नाम है समता सिंह।
1: अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
0: जी मैं हूँ समता सिंह।
1: जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम्ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
0: क्या?
1: अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ।
0: अरे बापरे, अरे सुनिए तो, ऐसे मारपीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: अरे गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
0: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
1: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो अपने बॉस का नंबर दो।
0: बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
1: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
0: ओ अरे वो सब छोड़िए ना।

0: असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं।
1: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
0: बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ। मैं तो सचमुच में फंस गई, बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, क्या करूं? फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलिन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम।
0: जनाम जनाम, ये जनाम क्या होता है?
2: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में।
0: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है?
2: मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
0: अच्छा,
2: करवा लो जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाब।
0: फिर जनाब जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ
0: हाँ
2: सुनाओ।
0: हाँ,
2: अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
2: हाजी हाजी, ऐसा कीजिए मुझे, आप कुछ मत सुनवाइए, हम ही एक और गाना सुनवा देते हैं आपको।
0: हाँ,
2: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है।
0: अरे मिस्टर ऑल इन वन, सुनिए तो, सुनिए।
2: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं।

0: piace
1: Cambia scafone. Ci si mi piace che rita te. गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं ये तक क्लियर नहीं है इसका ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
1: अरे फिर बजने घंटे अब क्या करूं फिर लेती हूँ हेलो हेलो फरमाइश हेलो जी मैं समता सिंह बोल रही हूँ आप कौन बोल रहे हैं जी
3: बोल नहीं रहे हैं बोल रही हूँ
1: अरे बाप रे जी हाँ

0: जी हाँ, हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
0: हाँ,
1: हेलो गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
0: बात? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
1: मैं पूना से मनीषा बोल रही हूँ। मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
0: है? सास की शिकायत?
1: हाँ,
0: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
1: तो क्या हुआ? आप लोग हमेशा कहते हैं ना, कही अपने दिल की बात
0: है,
1: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है, खड़ूस कही की।
0: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
1: गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी?
0: आपकी।
1: तो सच किसे पता होगा?
0: आपको।
1: तो कौन बोलेगा और सुनेगा कौन?
0: आप वो मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
1: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
0: हाँ से आ गई है कॉलर। हाँ
1: देखो, अब मुकर नहीं सकती आप।
0: हाँ
1: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
0: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
1: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
0: हाँ
1: मेरी सास खड़ूस है।
0: हाँ,
1: वो मुझे सताती हाँ, है।
0: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
1: चुप, बोलो हाँ, वरना
0: गाने की फरमाइश कीजिए ना। हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही है, कहाँ से आ गई आप?
1: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
0: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
1: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
0: हाँ
1: तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए।
0: हाँ हाँ,
1: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
0: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
1: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
0: अरे हाँ
1: हाँ हाँ, सास को कोसना भी चाहिए।
0: हाँ
1: बोलो हाँ।
0: नहीं पर हाँ,
1: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
0: अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गए रे बाबा। हाँ हाँ,
1: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
0: अरे भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
1: हेलो
0: भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमान वीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काटे देती हूँ, बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्च गरम जली नास पीटी, मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो, मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो ये बाप रे, ये कॉल लूं कि नहीं लूं? लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
0: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
1: समता सिंह? अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
0: आप कौन बोल रही हैं?
1: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें? बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
0: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: हे भगवान, लगता है पानी डाल के जगाना होगा सासू माँ को। ये लो
2: छुपा।
0: अरे ये क्या कर रहा? करप जी, नाथ पीटी, ये क्या है? मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
1: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह है, ये क्या था सब?
0: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
1: हेलो फरमाइश का सपना?
0: हाँ पता नहीं, मेरा ये सपना कब सच होगा?
3: सौ सौ साल पगलाओ
1: हमारी सासू जी।

0: सौ साल पगलाओ,
1: हमारी सासू जी
0: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ।
1: सासू जी
2: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
3: हेलो फरमाइश।
4: था प्रहसन सास बहु और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनोश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
4: जी हाँ।
1: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
4: और उसका शीर्षक था ये
1: उन दिनों की बात है।
4: तो मंदाग्नि जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
1: बिल्कुल
4: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी।
4: जी, जी,
1: और
4: जी।
1: हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाया भी करते थे।
4: चलिए इसका मजा लेते हैं।

जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप पहली बार देखिए अशोक कुमार को गद्दार के रोल में। आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप जुबेल थीप जुबेल थीप।

ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने यहां दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहां कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन है, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी वो ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमे को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें, ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी।

और दाई और विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो ओम।

करे और विष्णु में बसती थी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाए तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उसे कहा जाता कि भाई यार 10 सी कम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सी कम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था और इस तरह से शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। ये होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आ निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। ये वो चिर परिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहाँ हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीर कर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में ये दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था जिसमें 2 होते थे, वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था तब। तो तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के

आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के दो मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहाँ थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ न आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। ये कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड एम एन प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थी। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर माँ की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप, ए लेके जा, इसको समझ नहीं आ रहा क्या उसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा, जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर

मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक, मतलब यहाँ बंदूक से गोली निकली वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़ कर अंदर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते, और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी अब नीली कैसे हो गई। कुछ दर्शक जो होते वो जंप और जर्क पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमयी रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई है साले, हाँ मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा समझो उसका जीवन अकारण चला गया। कुछ लोग जो थे मतलब पहला दिन और पहला शो इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माएं ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना, आरती भी नहीं उतार पाती थी। और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों का बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान न होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अरे सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए, मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको हम एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना, उन्हें कहा हाँ। मैंने कहा भाई आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ रही है। ठहाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी ये पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट

कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हो और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देख ये टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हो, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिया, बैठने दो ना, अरे जगह का भैया देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो क्या गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह, अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था। उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे, मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हाल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी, आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे क्योंकि भीड़ इसमें कदम कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सके। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है, 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ याद नहीं आता, कहाँ देखा ये भी याद नहीं। एक तो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है, आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती। जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है, उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है, कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं, उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें।
ये उनकी आदत

हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी, जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है ये 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ NRI किस्म के हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू दो किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन्हीं तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद ये हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असवाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ देके परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे, जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से, सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवरलाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभर कर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है, बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म, दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, MS सत्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं, अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मौके की जगह है, हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला। वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां 3 Idiots ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर,
सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम

0: भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय, सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीजें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, दौर जो है हम फिर से जी लें, याद करने चीजों को, आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है,
1: हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लैला मंजू रोजाना चार खेलों में आपसे अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
2: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
3: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
2: जी हाँ,
3: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
2: और उसका शीर्षक था ये
3: उन दिनों की बात है।
2: इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
3: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
2: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
3: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों

0: योग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को शुरू में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: एसडी बर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
0: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

जो सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रोशन की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत, किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राजेश रोशन का संगीत था।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी और श्रोताओं यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओं, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इशारा फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी की बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कलकल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती है। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल मौसम आशिकाना बिंदिया आवाज तस्वीर शायद कायनात तरन्नुम तमन्ना कुदरत प्यार राज मुश्किल मुमकिन खफा बहाना घर दीवाना बादल बेकरार अच्छा चलते और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का, बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती है, आपकी जो पंक्तियाँ प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहाँ हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने और अच्छा तो हम चलते हैं कब वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है, और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शुद्ध साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही है, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी न कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है, तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती, बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर दिल खूबसूरत न हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियां, उनके पंक्तियों, उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली, जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोता, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतों से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अटखेलियां करना, एक संगीत में मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नजारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ।

तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज का पेड़ है? एक इन्होंने ही, जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफर तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुहेले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहन का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और शुभकामनाएं लिखी है इन्होंने। एक और श्रोता लिखती है कि दो दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहर उठता है, मौसम है आशिकाना। वही हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मजा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना, और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। और वैसे आप कोशिश करिए, कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल अध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे है। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर, जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती है, ये मौसम रंगीन समा और कुछ गीत इन्होंने लिखे है, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते है कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओ, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं, श्रोताओं आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

सविता धवन जी पर फिल्म आया गया, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और रोज मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख चीनी की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुनिया सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था मजरू सुल्तानपुरी के बोलते राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती है कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहाँ तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इसे भारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकिजा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में, और रीता अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं, क्या किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही है प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी, सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है, जब चांदनी रात हो।

हमारे श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की। थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माए गए ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती है कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर भी हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

हेलो सजना, इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है, वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है, तो वो

0: नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।
1: सुनो तो जरा, हमको है ये कहना।

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा, तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

0: मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ में नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की पांच धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेनजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की।
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम

0: फोर्स काम किया था, उसके बल पर जो कहीं पूरे हमारे आस पास के जिलों को भी रोजगार मिले उसका प्रबंधन कर रहे हैं।
1: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ईशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ईशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हाल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: Ей,
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।

0: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन

0: पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रेसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था। मशहूर सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजनू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: नहीं आए वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती।

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मंसूर सुल्तानपुरी के बोलों को सुरंग में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर स्विंग का दो गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और भरत यादव काजल शर्मा विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आर्या, भारती पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आर्या।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचेतन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: जाइए ना।
1: और जल्दी कीजिए, हमें भी बाहर जाना है।
0: मेरी भी कॉल लगने वाली है।
2: हाय फ्रेंड्स।
0: हाय,
2: क्या चल रहा है?
0: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं
1: तो
2: चल चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
3: वहाँ क्यों?
2: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए।
3: तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी।
2: आया जी।
0: हाँ बिटिया,
2: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
0: लाई चाय बिटिया,
2: चल बैठ सुमित।
4: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
2: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
3: अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
4: जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
2: वो दिन को
4: कहाँ
2: तुमने शायद शैम्पू किया है।
5: वाह,
2: कितने खूबसूरत बाल हैं।
4: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
2: सुमन सुमन, वो देख वो देख, सुमन देखो कहाँ। कितनी अच्छी लग रही हैं
5: सच में।
2: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
4: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
2: मैं तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
4: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
2: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
4: गरम गरम खिला रहे हो।
2: हाँ तो फ्रेंड्स,
0: यस
2: मिस सुमी, आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। बस ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
4: माँ तू नहीं सुनेगी।
2: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
6: थ्री चीयर्स फॉर हावी कवित्री।
2: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
4: अरे यार, समोसा खाने दो।
2: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
4: ओ रीमा, अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आँखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं कर्ण वंदन हे वृक्ष चंदन।
2: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी समी?
4: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
2: ओके बाय बाय फ्रेंड।
6: बाय बाय बाय।
2: अरे नमस्ते भाई साहब।
7: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
2: कबूतरी? वो डू यू मीन, यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले ताल झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकती है, और चलती है तो
7: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा।
2: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
7: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
2: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
7: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं, तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
2: अच्छा और क्या कहती है?
7: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
2: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
7: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
2: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
5: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
2: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
8: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
2: तार वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
8: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
2: रिजर्वेशन?
8: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
2: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
8: मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
2: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
8: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
2: ब्याह?
8: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
2: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
8: ये मजाक नहीं सुमी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
2: भैया मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
8: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
2: ओ भैया,
8: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने के बाद, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
2: हाँ, कभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
8: सुमी बस प्लीज, दुख की रकम छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
2: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, उसे बिना पूछे सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
5: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: छोड़कर मत जाओ।
1: क्यों?
0: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे घबराना कैसा, सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
0: छोड़ मुझे रूना, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे मिट्टी हुए सांप दिखाई दे रहा है। मेरा क्या होगा रूना?
1: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तो एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
0: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? सोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ
0: अंकल,
1: सोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।

0: दादी, घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया, पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह, क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू, इसे आईएस बनना है, आईएस, समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे चलो चलो चलो।

0: ताई आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आधी तार जोड़ी है।
1: आइए भाभी, आप उधर बैठिए। आइए भैया,
0: आप तुम भी चलो।
2: नहीं, मैं आंगन में जा रहा हूँ। भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
0: आइए भैया, दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा।
4: किस्मत वाले हैं हमारे भी
0: अच्छी होगी।
1: चाय पी लीजिए। आप लोग भी चाय पीजिए।
2: क्या कहा, मैं थक गया हूँ। इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने। ऑफिस का सारा काम पड़ा है। ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
1: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है। हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
2: भाभी अच्छा मजाक है। किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ। भाभी भाभी भाभी वाह। लो लो चाय पियो। लो लो भाभी तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो।
0: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है? हे भगवान, अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था बुआरी के चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया। अरे क्या होगा?
5: अरे बंदी भी तो पागल के साथ।
2: क्या था? अरे मैं पागल हूँ।
5: अच्छा
2: पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। ये मुझे क्या पहना दिया? हार, अंगूठी, ये लो, ये लो, ये लो, लूटो, लूटो, पागल का ब्याह हुआ है। झूमो, नाचो, गाओ।
1: भैया, भैया, ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी, बुआ, पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
2: छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। देखो, देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
6: हूँ,
2: मैं पागल नहीं।
1: बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।
6: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
1: भैया को दौरा पड़ा है बाबूजी। अनशन बोल रही है।
6: क्या कह रही?
1: कभी हंसती है तो कभी रोती है, कपड़े फाड़ रही है, चाची बुआ साबुन ही पकड़े हुए हैं।
6: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ। उसे डॉक्टर के यहाँ तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
1: अच्छा।
6: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू, तुम बेटे बहू को संभालना।
1: अच्छा बाबू,
6: घबरा गई होगी। हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
1: ठीक है बाबूजी। भाभी, ताई जी संभालिए भैया को। भाभी, भाभी, ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
0: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
1: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं है।
0: तो फिर
1: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई है। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजिडी हो गई।
0: ट्रेजिडी?
1: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया।

0: भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। 10 दिनों तक ना सोई और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा। इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
1: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
1: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाती रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: वाह जी, कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। इससे अच्छा होगा अगर आप मेरा गला घोट देते। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी जेठी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंबला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था। हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी,
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: अब क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं? फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रही हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पढ़ देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा।

0: शायद उसका वहां मन बहल जाए, जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
0: ठीक।
2: अरे आगे आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
3: मम्मी प्लीज, क्या सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे? सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
2: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तू? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
3: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
4: चंदन बेटा छोड़ना,
2: सोया बेटा, क्या हो गया? मेरी सोई बेटी।
3: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
2: हाँ देखिए डॉक्टर साहब कितना तेज बुखार है।
5: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
2: ठीक है ठीक है,
5: और घबराने की कोई बात नहीं है।
2: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
2: ठीक है,
3: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
2: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
3: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
2: धोखा? कैसा धोखा?
3: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
2: अच्छा,
3: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
2: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हे भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
3: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा, मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
2: क्या?
3: कि सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तुमसे हम निपट लेंगे।
2: अच्छा
3: ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
2: ठीक है। आठ वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, पर मैं क्या करूं?

0: Karume.
1: अंदर आ सकता हूँ?
0: ओ आप आइए आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
1: सब ठीक है। तुम कैसी हो सुमी?
0: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं?
1: यहाँ रहकर भी क्या करूँगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूँ।
0: कैसे तोड़ दूँ? ये दुनिया, ये समाज मुझे चीनी देगा।
1: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख। तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन,
1: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत थक गई हूं
1: सुमी।
0: और अब जीत
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

जाने उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरे

0: रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ

0: दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार मुंबई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जाम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया। और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर माइक रमेश तलवार, म्यूजिक माइक कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना, वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया। और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी
2: समाधि
1: चल। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर कृपाशन ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उनका इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट है, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बिया चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: यस,
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला, 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना। ठंडी में
2: काम बन जाता था,
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब था वो चीज की गई। अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा ने नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया इसको डबल सी 5 बार से जोड़ कर कोने में बैठा सब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
2: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सुनील कब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। देखिये कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप खुल लीजिए
2: हाँ
1: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर उसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दोनों बहुत फिल्में कर रहा था।
2: हाँ बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर उसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
2: वो भी आपके दोस्त।
1: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
2: जी जी,
1: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में
2: हाँ,
1: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके

0: लाइन में था और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त थे। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है वो खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, वही समझ वही पुलिस और सिपाही और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं, नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल,
0: और थी भी वो उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार
0: कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से।

0: राजेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस न्यू कमर था राइटर।
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहे करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, और वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटिवली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ,
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटक

0: लड़कों की बातें करना चाहता हूं जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
1: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहूँ पूछू, तो मेरे पास कोई आया जो भी कैसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, अपने स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
0: जी जी,
1: मैंने कहा ये जो इधर सेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, मेरे वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, नाटक में नहीं होता।
0: जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी,
1: नाटक में आप अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूंगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब मैं काम करता हूँ और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती है, फला होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। बोला हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस फूड डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी एनएफडीसी के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? मैंने जिया जी के पास पूछते अगर वो करने के लिए हाँ कर दे। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का एबीसीएल के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। मैंने सब्जेक्ट सुना, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने

0: कम से कम ऑलमोस्ट था मैं, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर, फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे, अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहे, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती है, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सल हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी हो, उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
1: अरे वाह,
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिल में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो दर्शन करनी शुरू हो गया और फिर हमें अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया,
1: वाह वाह वाह,
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का लेकिन आपका रोल बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जजी थ्रो प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो इन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो वाचमैन का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, आल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह मांगा दाम में, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी इस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? प्ले करूंगा, रोल करूंगा, कब करने जाओगे, कौन सी स्क्रिप्ट सुनाओ, और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो इंटरव्यू मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशो का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोएट्री के ऊपर उनकी कहानी लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूंगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो

लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर थे उसने के वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद, तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शवाना जी को ये थोड़ा करूंगा अब आपके साथ ये करेंगे, तो फिर मैं आपको उसका प्ले दे सकता हूँ राइटर ने। शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही है, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, शवाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो, मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा। मेरे को उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशो का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखे, मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए, बोले मैं नहीं कहूंगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए, तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटे मैच करने पड़ती है शवाना की और वो, तो आप किसी और आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इतना में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सिद्धदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो था मैंने वो प्ले का, हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो मिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे क्लिस्ट हिंदी।

0: होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी है उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमला जी की बेटी वो आई परीक्षित थानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग और ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, तो वो बलराज सहनी ने रोल किया था, नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो डॉक्टर अलग था अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने दिखाई क्यूट प्ले है,
0: हाँ बहुत अच्छा, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान के राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एकाध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एकाध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ करो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।
2: अच्छा।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। कहते हैं जिसे मोहब्बत हो गई उसे अपने महबूब के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। इश्क में डूबे इंसान को अपने महबूब की हर चीज दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, नाजुकी, उसका हुस्न, उसकी नजरें। जिसने तेरी नजर को देख लिया उसको दुनिया नजर नहीं आती। सच, उन्हें देखकर ये लगता है जैसे हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई हो।

तसव्वुर एक ज़हनी जुस्तजू का नाम है शायद। ये दिल उनको ढूंढ कर लाता हुआ महसूस होता है। उनकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है। हे फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। मुझको महबूब है आपकी हर अदा, तू मेरा रंग है, तू मेरा रूप है, मेरी छांव है तू, मेरी धूप है तू। जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, दिल कहता है, दिल कहता है उनको भी मैं याद आता हूं।

अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता भीगी हुई एक शाम का मंजर, तेरी आंखें। आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी है तेरी मेरी कहानी, सच कहूं इश्क हो जाएगा मेरी दास्ताने इश्क से। रात भर जागा करोगे इस कहानी के लिए।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम। न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिजर की शाम।

जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले, एक कसक, एक टीस, एक सूनापन, एक अधूरी सी आहट। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही।

जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। एक ही मिट्टी से हम दोनों बने हैं, तुझमें और मुझमें मगर फासला यूं कितना है। पूछते हो तो सुनो, है और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। वो मुझको टूट के चाहेगा, छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी, उसे ये हुनर भी आता है। कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन, रूठा दोस्त, हमने तो उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। वक्त के बदलने से दिल कहां बदलते हैं जाना, वक्त के बदलने से दिल कहां बदलते हैं जाना। आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है।

अक्सर पूछते हैं लोग, किसके लिए लिखते हो? अक्सर कहता है दिल, काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

सो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, एफएम वेव्स 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर के ऐप पर आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और दोस्तों युववाणी में आज आपके साथ है आप ही का अपना रेडियो फ्रेंड कार्तिक। तो दोस्तों कैसी है आपकी शाम? उम्मीद है सेहतमंद और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप सभी तैयार होंगे इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम और हमारी आज की बात। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल डिग्री या ज्ञान ही सफलता की गारंटी नहीं होते। व्यक्तित्व विकास भी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। ये हमें दूसरों से अलग पहचान दिलाता है। व्यक्तित्व विकास का अर्थ केवल बाहरी रूप से नहीं होता, ये हमारे व्यवहार, सोच, बोलचाल और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। एक अच्छा व्यक्तित्व लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और यही प्रभाव आगे चलकर अवसरों के द्वार खोलता है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल प्रतिभा काफी नहीं है, लोग आपके व्यवहार और संवाद शैली को भी महत्व देते हैं। इसीलिए खुद को हर क्षेत्र में बेहतर बनाना जरूरी हो गया है। यही व्यक्तित्व विकास की शुरुआत है। सकारात्मक सोच व्यक्तित्व विकास का पहला कदम है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा सोचता है वह कठिनाइयों का सामना भी आत्मविश्वास से करता है। सकारात्मकता सफलता की राह आसान बनाती है। अच्छा संवाद कौशल भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पष्ट और विनम्र तरीके से बात करना दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। ये गुण कार्य क्षेत्र में भी बहुत काम आता है। आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होता है। यदि हमें खुद पर भरोसा हो तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास सफलता का मजबूत आधार है। समय का सही उपयोग भी व्यक्तित्व विकास का हिस्सा है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अधिक गंभीर होता है। ऐसे लोग जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। अनुशासन हमें व्यवस्थित जीवन जीना सिखाता है। नियमितता और अनुशासन से ही किसी भी क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त होती है। ये आदत व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों ज्ञान और अनुभव व्यक्ति को परिपूर्ण

वक्त वो बनाते हैं। सीखने की आदत हमें लगातार आगे बढ़ाती है, यही आदत सफल लोगों की पहचान होती है। शारीरिक भाषा भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे हाव भाव और चेहरे की मुस्कान हमारी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं, इसीलिए सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। गुस्से पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले पाता है। संयम सफलता का महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा श्रोता बनना भी व्यक्तित्व विकास का हिस्सा है। जो व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, वो बेहतर समझ विकसित करता है और ये गुण रिश्तों को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, दूसरों का सम्मान करना हमें महान बनाता है। विनम्र व्यवहार हर जगह पसंद किया जाता है। अच्छे संस्कार व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। ये व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए। जब हम अपनी कमियों पर काम करते हैं, तभी वास्तविक सुधार संभव हो पाता है। यही आत्मविश्वास की सही दिशा है। आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। कई बार आलोचना हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। समझदारी इसी में है कि हम उससे बेहतर सीख ले। सही सोच आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों, सफल व्यक्ति हमेशा धैर्य बनाए रखते हैं। वे असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। धैर्य व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और टीम वर्क की भावना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, दूसरों के साथ मिलकर काम करना नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है और ये कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन व्यक्तित्व भी हमारी पहचान बन चुका है, इसलिए सोच समझकर अपनी बात रखना जरूरी है। ये हमारी छवि को प्रभावित करता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन व्यक्तित्व विकास के लिए काफी मददगार है। योग और व्यायाम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और ये मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाते हैं। पढ़ने की आदत भी व्यक्तित्व को निखारती है। अच्छी किताबें हमें नई सोच देती है, वे हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती है। ज्ञान व्यक्तित्व को गहराई देते हैं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व विकास एक दिन में नहीं होता, इसलिए निरंतर अभ्यास और धैर्य जरूरी है। धीरे धीरे किया गया सुधार जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। आज का युवा यदि अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दे, तो वे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अच्छा व्यक्तित्व सफलता को अवसर को बढ़ाता है। इसीलिए हमें केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत व्यक्तित्व ही सच्ची और स्थायी सफलता की पहचान होता है। तो साथियों, व्यक्तित्व विकास केवल आदतों का बदलाव नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक सतत प्रक्रिया है। इसी संदेश के साथ हमारी आज की बात यही समाप्त होती है और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गाना आपके अपने रेडियो सेट पर।

तो दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और तो दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब समय है हमारे खास यात्रा सेगमेंट सैर सपाटा का, जहां हम आपको करवाते हैं देश की खूबसूरत और यादगार जगहों की सैर। आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश की वादियों में बसे एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन की ओर, जिसे प्यार से कहा जाता है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। दोस्तों, पचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक बेहद सुंदर हिल स्टेशन है। चारों ओर हरियाली, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं इस जगह को खास बनाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बसा पचमढ़ी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का शांत वातावरण लोगों को शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का एहसास कराता है। दोस्तों, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये नाम इसकी प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक वादियों की वजह से पड़ा है।

यहाँ आने वाला हर पर्यटक इस जगह की खूबसूरती में खो जाता है। पचमढ़ी का मौसम साल भर सुहावना रहता है दोस्तों, गर्मियों में भी यहाँ ठंडक महसूस होती है, इसी कारण बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये स्थान केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्राचीन गुफाएं और मंदिर मौजूद हैं। पांडव गुफाएं पचमढ़ी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडव कुछ समय यहाँ रुके थे, इसी कारण इन गुफाओं का नाम पांडव गुफाएं पड़ा। बी फॉल पचमढ़ी का एक बेहद लोकप्रिय झरना है। ऊंचाई से गिरता पानी और आसपास की हरियाली पर्यटकों को काफी रोमांचित कर देती है। धूपगढ़ पचमढ़ी का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है और दोस्तों यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह बेहद खास है। जटाशंकर गुफा भी यहाँ का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये गुफा प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। महादेव गुफा और गुप्त महादेव भी पर्यटकों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पचमढ़ी का शांत वातावरण ध्यान और योग के लिए भी काफी अनुकूल माना जाता है दोस्तों। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को शांति प्रदान करती है और यहाँ की वादियों में घूमते समय पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवाएं मन को काफी प्रसन्न कर देती है। पचमढ़ी एडवेंचर पसंद लोगों के लिए खास जगह है। यहाँ ट्रैकिंग और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है दोस्तों। सतपुड़ा नेशनल पार्क के नजदीक होने के कारण यहाँ वन्य जीवों की विविधता भी देखने को मिलती है। प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये जगह बेहद आकर्षक है और बरसात के मौसम में पचमढ़ी की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। चारों तरफ फैली हरियाली मन मोह लेती है दोस्तों। यहाँ के छोटे छोटे बाजार भी पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह लोगों को काफी पसंद आते हैं। पचमढ़ी में कई सुंदर होटल और रिसोर्ट भी हैं, जहां पर्यटक आरामदायक ठहराव का आनंद लेते हैं। दोस्तों पचमढ़ी की प्राकृतिक गुफाएं और झरने फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक खास अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ की हर सुबह नई ताजगी और नई ऊर्जा का एहसास कराती है। प्राकृतिक वातावरण मन को सुकून देता है और पचमढ़ी की यात्रा हमें प्रकृति के महत्व को समझने का अवसर भी देती है। ये हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है दोस्तों। यहाँ की साफ सफाई और हरियाली पर्यटकों को काफी इम्प्रेस करती है। ऐसे में हमें भी ऐसी जगहों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। पचमढ़ी मध्य प्रदेश पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों। हर साल हजारों देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर उम्र के लोगों को आकर्षित करती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई यहाँ आनंद महसूस करता है। पचमढ़ी की शाम बेहद खूबसूरत होती है। ठंडी हवाओं के बीच डूबता सूरज मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का शांत वातावरण तनाव को दूर करने में बहुत मददगार है। यही कारण है कि लोग बार बार यहाँ आना पसंद करते हैं। पचमढ़ी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति और शांति का सुंदर संगम है दोस्तों। अगर आप प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं तो पचमढ़ी आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। ये यात्रा हमें प्राकृतिक धरोहर को सहेजने की प्रेरणा देती है। तो साथियों अगर कभी मौका मिले तो जरूर कीजिए सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी की यादगार सैर। तो दोस्तों प्रकृति की गोद में बसी पचमढ़ी की ये खूबसूरत सैर यही समाप्त होती है और आपको लेकर चलते हैं म्यूजिकल सैर पर और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना आपके अपने रेडियो सेट और न्यूज़ ऑन AIR के ऐप पर।

सो वेलकम बैक दोस्तों। और अब समय है हमारे प्रेरणादायक स्तंभ सक्सेस टिप्स का, जहां हम बात करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के आसान लेकिन असरदार तरीकों की। दोस्तों आज हम बात करेंगे अच्छी संगत और नेटवर्किंग से मिलती है सफलता। दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए मेहनत और लगन जरूरी होती है, लेकिन अच्छी संगत भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों और व्यवहार दोनों पर पड़ता है, इसीलिए सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। अच्छी संगत हमें सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है, ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। दोस्तों सकारात्मक लोग हमेशा ऊर्जा से भरपूर होते हैं। अगर हम मेहनती और अनुशासित लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसी ही आदतें विकसित होने लगती है, और यही आदतें आगे चलकर सफलता का आधार बनती हैं। दोस्तों सफल लोग हमेशा सीखने की आदत बनाए रखते हैं, वे अच्छे लोगों के अनुभवों से इंस्पिरेशन लेते हैं, इसी कारण वे लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छी संगत हमें

गलत रास्तों से दूर रखती है। ये हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाती है और सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा में बदल सकता है। आज के समय में नेटवर्किंग का महत्व भी बहुत तेजी से बढ़ा है। नेटवर्किंग का मतलब नए लोगों से जुड़ना और संबंध बनाना। ये कैरियर और व्यक्तित्व विकास दोनों में बहुत मददगार है। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमें नए विचार और नए अवसर मिलते हैं। इससे हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है। दोस्तों, अच्छे संबंध भविष्य में कई अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। कई बार सही व्यक्ति से मुलाकात जीवन बदल देती है, इसलिए रिश्तों को महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्किंग केवल नौकरी तक सीमित नहीं होती, ये जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी साबित होती है। इसीलिए अच्छे संबंध हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन देते हैं। हमें लोगों से विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार लोगों के दिलों में जगह बना लेता है और यही हमारी पहचान को मजबूत करता है। दोस्तों, सफल लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वे जानते हैं कि सहयोग से ही प्रगति संभव है। मिलजुल कर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को काफी हद तक कमजोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के दौर में नेटवर्किंग और भी आसान हो गई है, लेकिन हमें सही और प्रेरणादायक लोगों को ही फॉलो करना चाहिए। ऑनलाइन दुनिया में भी समझदारी बहुत जरूरी है। अच्छी संगत हमें नई चीजें सीखने का अवसर देती है। ये हमारे अंदर आत्मविश्वास और उत्साह पैदा करती है। सीखते रहने वाले व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं। कई सफल लोगों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अच्छे मित्रों और मार्गदर्शकों को दिया है, क्योंकि सही लोग जीवन को सही दिशा देते हैं। हमें अपने मित्र सोच समझ कर चुनने चाहिए, क्योंकि सच्चे मित्र हमेशा हमारी प्रगति चाहेंगे। वे मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हमें हमेशा विनम्र और सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही मजबूत संबंधों की नींव होता है। अच्छे लोग स्वभाव वाले व्यक्तियों को ज्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी छोटी मुलाकातें भी बड़े अवसर बन जाती है, इसलिए हर व्यक्ति से सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अच्छे संबंध भविष्य में काम आते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे सपने और लक्ष्यों को समझते हो। ऐसे लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। अच्छी नेटवर्किंग हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। ये हमारे करियर को नई दिशा देती है और सही संपर्क कई मुश्किलों को आसान बना देते हैं। इसीलिए जीवन में अच्छे लोगों की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही संगत हमें सही रास्ता दिखाती है और यही रास्ता सफलता तक पहुँचता है। दोस्तों, क्योंकि अच्छी संगत और मजबूत नेटवर्क सिर्फ अवसर ही नहीं देते, बल्कि जीवन को बेहतर और सफल भी बनाते हैं। तो साथियों, अच्छे लोग, अच्छे विचार और अच्छे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी संदेश के साथ हमारी सक्सेस टिप को यहीं विराम देते हैं और आपको लिए चलते हैं म्यूजिकल दुनिया में और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना।

तो दोस्तों इस तरह आपने सुनी कुछ खास बातें और सुरीले गीत आज के हमारे युववाणी के सफर में, और वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। तो दीजिए अनुमति आज के अपने रेडियो फ्रेंड कार्तिक को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं, अब समय है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए जानते हैं आज और कल की सभाओं के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। फिल्म संगीत कार्यक्रम का वक्त होगा 6:30 से। 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा 7:10 से और 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आज की बात का विषय है कृषि के आधुनिक तौर तरीकों को जानें। शीर्षक संगीत कार्यक्रम का समय है रात्रि 8 से और 8:15 पर होगा समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। साज और आवाज इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 8:30 से। 8:45 पर होगी समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे रात्रि 9 से 10 तक। एक ही फिल्म से कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी रात्रि 10:00। 10:30 पर वक्त होगा सुगम संगीत कार्यक्रम का। हिंदी में समाचारों का समय होगा रात्रि 11:00 से और 11:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

कल की प्रातःकालीन सभा में भक्तिधारा कार्यक्रम से शुरुआत होगी। 6:05 से 6:30 पर समय होगा चिंतन कार्यक्रम का। रामचरितमानस गान 6:35 पर सुनेंगे। लोक रंजनी कार्यक्रम का वक्त होगा 6:45 से। हिंदी में समाचार 7 बजे से होंगे और 7:10 पर लेकर आएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, यादों के झरोखे से। इस कार्यक्रम का समय होगा 7:20 से। 7:50 पर होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

समाचार प्रभात का समय होगा 8 बजे से और 8:15 पर रिले की जाएगी मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुति होगी 8:30 से और 9 से रात्रि 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का वक्त होगा सुबह 10 बजे, रिले किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अनुरोध गीत कार्यक्रम का समय है 10:05 से और 10:30 पर होगा कार्यक्रम महिला जगत। इसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं।

विविध भारती सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। दोपहर 11 बजे से दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और हिंदी में समाचारों का वक्त होगा 2:15 से। 2:30 से विविध भारती के कार्यक्रम पुनः सुन सकेंगे। युववाणी कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर। गोधूली कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 6:05 से। 6:30 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। सबरस कार्यक्रम का वक्त होगा रोज की तरह 6:50 पर। शाम 7 बजे से होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 7:20 पर वक्त होगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। इसमें आज की बात का विषय है खेत और घर की रखवाली के लिए श्वान भी रखें। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8 बजे से। 8:30 पर वक्त होगा हमारा

मिनट पर शाम 7 बजे से होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 7:20 पर वक्त होगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। इसमें आज की बात का विषय है खेत और घर की रखवाली के लिए श्वान भी रखें। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8 बजे से। 8:30 पर वक्त होगा हमारा बैतूल कार्यक्रम का। समाचार संध्या 8:45 से सुनेंगे और 9:10 से होगा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। सुगम संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 10:30 से और रात्रि 11 बजे से होंगे हिंदी में समाचार। ये थे आज और कल की सभाओं के शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6:05 हो चुके हैं और अब वक्त हो चुका है माटी के स्वर कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं लोकगीतों का ये कार्यक्रम।

और अब आइए सुनते हैं श्यामू परते का गाया हुआ ये अंतिम गीत। कार्यक्रम है माटी के स्वर, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

श्यामू परते और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही माटी के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सुनिधि चौहान, कुमार सानू की आवाजें, अनु मलिक का संगीत, बोल समीर के। फिल्म का नाम है अजनबी।

फिल्म का नाम है अंदाज। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सब रस। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं चंदन दास।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से इस समय जारी है कार्यक्रम सबरस। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं चंदन दास।

0: और अब प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम का अंतिम गीत, आवाज चंदन दास की।
1: एक महफिल में आपका इस्तकबाल है। गजल चाहे हमारी मौसीकी और अदब होता, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर।
2: मैं अपनी सारी जवानी तबाह कर लूंगा।

चंदन दास के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: तीनों कॉलेज में
1: तुम भरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: वास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल
1: वो कहाँ
3: मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: भरोसे की शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है इस बार तो लगवा ही देता हूँ जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुम्हें
7: मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज करना
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
7: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
8: अब क्या करोगे
7: फ्री रहता है ना
1: मुद्दू सुधर जा
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
8: आरबीआई कहता है
5: भरोसे की शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल भोपाल की तीशा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आईआईटी मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा यह दल समग्र आईटी अवसंरचना की मजबूती लॉगिन प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार ऊर्जा मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है
10: We want peace and stability.
11: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है तीसरा हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुले हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते
9: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित

0: चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदा निरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में तुषार शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फोरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय टीशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। टीशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION, डिजिटल जोन, प्रेस्टीज, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बायपास रायसेन रोड और ION, डिजिटल जोन, RGPM सनखेड़ी दानिशकुंज कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजातीय ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम ग्राम सभा सुन रहे सभी किसान भाइयों और सभी श्रोताओं को प्रकाश मानेकर का राम राम। किसान भाइयों कैसे भैया? भैया गर्मी तेज पड़ रही है तो आप अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि किसान भाइयों मौसम जब गर्म होता है और इसका असर जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर का अस्वस्थ होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या होता है कि हम अगर अपने स्तर पर थोड़ी सावधानी रखें तो हम स्वस्थ रह भी सकते हैं। देखिए गर्मी तेज पड़ रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ही तापमान चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हम अपने खान पान के तरीके को थोड़ा सा बदलें। और गर्मी का ये समझिए कि ये 8-10 दिन 15 दिन जो समय बचा है ये तेज़ गर्मी का समय होता है। अब आगे आने वाले समय में नवतपा भी शुरू हो जाएगा तो नवतपा में भी अच्छी गर्मी पड़ती है ऐसा हमारे जो बुजुर्ग है वो बताते हैं। और एक बात ये भी कहा जाता है कि अगर नवतपे में गर्मी अच्छी काफ़ी तेज पड़ती है तो बरसात भी अच्छी होती है, और जब बरसात अच्छी होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो किसान भाइयों की जो फसलें हैं उसमें उत्पादन भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारे ज़िले की हम बात करें बैतूल ज़िले की, तो अपने ज़िले में जो खेती बाड़ी है वो मौसम पर काफ़ी कुछ निर्भर करती है। बरसात अच्छी होती है तो यहाँ पर फसल भी अच्छी होती है, अगर बरसात कम होती है तो फसल को नुकसान भी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवतपे पे भी तापमान अच्छा रहेगा और गर्मी अच्छी पड़ेगी और जैसी मान्यता है उस हिसाब से बरसात भी अच्छी होगी। हालांकि जो मौसम विशेषज्ञ है उनके हिसाब से तो इस बार मानसून कुछ कमज़ोर बताया जा रहा है, लेकिन ये हो सकता है कहीं कमज़ोर हो, कहीं पर अच्छी बरसात हो, कहीं पर कम बरसात हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अपने बैतूल ज़िले में बरसात अच्छी होगी और हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा। बस किसान भाइयों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो गर्मी के दिन चल रहे हैं उसमें अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, तेज धूप में ना निकले, और जब धूप तेज हो तब अपने कामों को थोड़ा सा विराम दे दे, थोड़ा आराम करे, और जब भी कहीं बाहर निकले थोड़ा चश्मा वगैरह लगा ले, सिर पर थोड़ा गमछा वगैरह ऐसा रख ले ताकि तेज धूप से बच सके और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखे। और जो अपना खान पान है उसमें दूध दही लस्सी छाछ आम का पन्ना ऐसी चीज़ें लेते रहे ताकि आप स्वस्थ बने रहे। बस यही कहना था किसान भाइयों। चलिए अब खेतीबाड़ी की बात करते हैं और बात करते हैं कृषि के आधुनिक तौर तरीकों को जानने की। देखिए किसान भाइयों आप लोग सालों से खेती किसानी करते चले आ रहे हैं और अपने ज़िले की बैतूल की हम बात करें तो अधिकतर किसान भाई परंपरागत तरीका जो होता है पुराना तरीका खेतीबाड़ी का उसी पर खेतीबाड़ी करते चले आ रहे हैं। हालांकि अब समय बीतते जा रहा है, किसान भाइयों में भी जागरूकता आ रही है और किसान भाई भी अब नई नई पद्धति अपनाते जा रहे हैं। समय के हिसाब से खेतीबाड़ी में परिवर्तन करना भी जरूरी है अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। समय की मांग है कि हम खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाएं। जहाँ तक खेतीबाड़ी के आधुनिक तौर तरीकों की हम बात करें किसान भाइयों, तो आजकल नई नई तकनीकें आ गई है जो कि विदेशों में भी अपनाई जा रही है। ऐसी तकनीक होती है किसान भाइयों की, एक होती है सटीक खेती। अब ये पद्धति जो है उसमें फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों के स्तर को समझने के लिए डेटा विश्लेषण, उपग्रह इमेज

जरी और सेंसर का उपयोग इसमें किया जाता है। किसान इस जानकारी का उपयोग सटीक खेती की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं, जो फसल की उपज को अनुकूलित कर बाधाओं को कम करती है। इसके अलावा किसान भाई, एक होती है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। इस तकनीक के जरिए बिना मिट्टी के जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जा सकती है। इसमें केवल पानी के माध्यम से सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पौधों को दिए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में फसल की उत्पादन के लिए सिर्फ पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से पौधे मिट्टी में लगे पौधों की अपेक्षा 20 से 30 प्रतिशत बेहतर तरीके से बढ़ते हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है। ये बात हमने की है सटीक खेती के बारे में और हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में। इसके अलावा और एक फार्मिंग तरीका होता है जो कि एरोपोनिक्स फार्मिंग जिसको कहा जाता है। एरोपोनिक्स जो खेती है उसका एक पर्यावरण के अनुकूल तरीका माना जाता है। इसमें जड़ें हवा में लटकती रहती है पौधों की और पौधे बिना मिट्टी के आर्द्र वातावरण में बढ़ते हैं। इस विधि में पौधों की जड़ों पर पानी और पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव किया जाता है। ये तकनीक किसानों को ग्रीन हाउस के अंदर आर्द्रता, तापमान, पीएच स्तर और जल चालकता को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। किसान भाइयों, एक होती है वर्टिकल फार्मिंग। हो सकता है बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में जानते होंगे। कृषि योग्य भूमि की कमी को देखते हुए वर्टिकल फार्मिंग सीमित स्थान पर अधिक पौधे लगाने का बेहतरीन तरीका होता है। जो हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं उनके अनुसार वर्टिकल फार्मिंग के जरिए उगाई गई सभी फसलें पारंपरिक कृषि पद्धतियों की तुलना में 95% से अधिक जल कुशल होती है। इस विधि के माध्यम से हवा में नमी बरकरार रहती है और प्रदूषण से पर्यावरण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो किसान भाइयों, सटीक खेती, हाइड्रोपोनिक्स खेती, एरोपोनिक्स फार्मिंग, वर्टिकल खेती आधुनिक खेती के कुछ उदाहरण हैं जो किसानों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ये पद्धतियां किसानों की मुश्किलें और प्राकृतिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि राह में आने वाली बाधा को दूर करके किसानों को उचित तरीके से खेती करने में निश्चित ही मददगार साबित हो रही है। आधुनिक खेती के तरीके किसानों को डेटा संचालित अंतर्दृष्टि और टिकाऊ खेती के विकल्प प्रदान करके कृषि उद्योग में क्रांति ला रहे हैं। तो हम अपने किसान भाइयों से, सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि भैया, किसान भाइयों, आप भी अब परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करना सीखें। और आधुनिक तरीके से खेती में जैसे हम बताया कि सटीक खेती है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग है, एरोपोनिक्स फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग है, इन तरीकों को भी आप जानें ताकि इसमें आपको लागत भी कम लगेगी और उत्पादन भी आपको अच्छा होगा। तो ये किसान भाइयों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कृषि के आधुनिक तौर तरीकों को जानने इस विषय पर। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ग्राम सेलगांव के लोक कलाकारों द्वारा गाया गया ये लोक भजन।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम सेलगांव के किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे ग्राम सेलगांव के लोक कलाकारों द्वारा गाया गया लोक भजन। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बात करते हैं, सोलर उपकरण अपनाए और कृषि लागत घटाए। देखिए किसान भाइयों, आजकल जो खेती बाड़ी के काम है वो सब खेती बाड़ी के जो भी जितने भी काम है सब और दूसरे भी काम है वो सब बिजली पर ही निर्भर करते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर उद्योग कृषि उत्पादों पर ही निर्भर है।

इसलिए देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन से लेकर उपयोग की अधिकांश वस्तुएं कृषि से ही आती है, जिसे पूर्ण करना चुनौतियों से भरा काम होता है। कृषि क्षेत्र में उपयोग में होने वाले उपकरणों के इस्तेमाल करने के लिए बिजली की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन आज भी गांव के कई भागों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करना कठिन कार्य है। और आप ये भी अच्छी ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो खेती बाड़ी है वो गाँव में ही अधिकतर होती है और ग्रामीण किसान भाई खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं, और देश की आवश्यकता के अनुसार ज़्यादातर बिजली कोयले से चलने वाले कारखानों से मिलती है, लेकिन ये स्रोत सीमित है और वायु प्रदूषण भी करते हैं। पिछले कुछ समय से सरकार पवन ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसका रखरखाव महंगा होता है और हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त तो भी नहीं होता है। इसलिए अब सरकार किसानों के फायदे के लिए सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कि कम खर्चीले और रखरखाव में आसान भी होता है, जिसे खेत, घर की छत या किसी भी मैदान में आसानी से लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, जैसे कि मोटर पंप है और भी दूसरे, जैसे बिजली से थ्रेसर है, बिजली से चलेगी, तो ऐसे जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, अगर खेत में बिजली ना रहे तो खेती बाड़ी में नुकसान हो जाता है। बस सीधी सी बात है, जो मोटर पंप आपने अपने कुओं में लगाया है या सबमर्सिबल या ट्यूबवेल लगाया है, अगर बिजली आपके खेतों में नहीं रहेगी तो फिर आप उसमें सिंचाई कैसे कर पाएंगे, और फसलों में जब सिंचाई नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें आपको नुकसान होगा, फसलें उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप सोलर उपकरण अपने खेतों में लगा सकते हैं और बिजली में के द्वारा जो लागत आती है उसको भी कम कर सकते हैं, कृषि में लागत भी कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आजकल ऐसे कृषि यंत्र आ गए हैं जो कि सोलर के माध्यम से भी चलने लगते हैं, जैसे कि जल पंप की हमने बात की तो सौर ऊर्जा से चलने वाले जल पंप भी आने लगे हैं, और सौर ऊर्जा का उपयोग तो आप जानती है बहुत सारे जगह करने लगे हैं। आजकल तो शहरों में हर घर के ऊपर आपको सौर उपकरण आपको मिल जाएंगे, जो कि सोलर पैनल जिसको कहा जाता है, जिसके माध्यम से घर की बिजली को आप निर्बाध रूप से चला सकते हैं। ठीक ऐसे ही खेती बाड़ी में भी आप सोलर इसको लगा सकते हैं और खेती में जो आवश्यक बिजली है इसके माध्यम से आप जो कृषि यंत्र है उसको चलाकर आप खेती बाड़ी आराम से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले जो कृषि यंत्र है उसमें जल पंप की हमने बात की, तो ये डीसी से चलने वाले होते हैं, और हम आपको बता दें कि आप अपने खेतों में भी सोलर उपकरण लगा करके उसको एक बैटरी के माध्यम से बैटरी में ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं और उसको अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पशुपालन और डेयरी संचालन में भी सोलर जो उपकरण होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फसल एवं अनाज को सुखाने के लिए तो प्राकृतिक तरीके से आप सूरज की रोशनी में भी इसको सुखा सकते हैं अनाज को। इसके अलावा किसान भाइयों, ग्रीन हाउस प्रबंधन में भी आप सोलर उपकरण के माध्यम से बिजली एकत्रित करके ग्रीन हाउस का प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस में भी जो तापमान है उसको सही तरीके ठंडा गर्म जैसा भी आपको करना है उसको इसकी गर्मी ठंडी बनाए रखने के लिए भी सोलर उपकरण के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। वैसे तो अधिकतर किसान भाई बिजली के माध्यम से करते, लेकिन बिजली जहाँ पर नहीं होती है ऐसी जगह पे आप सोलर उपकरण के माध्यम से भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज, इसके लिए भी बिजली काफ़ी लगती है, और कोल्ड स्टोरेज का जो तापमान है उसको बनाए रखने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर भी आप सौर ऊर्जा के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज चला सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये कुछ किसान भाइयों बातें थी कि सोलर उपकरण आप अपने खेती में लगा करके कृषि लागत को घटा सकते हैं और उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं चूहों का नियंत्रण करके अनाज भंडारण करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि
चूहे के माध्यम

0: चूहे जो है वो खेती बाड़ी में जो अनाज है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, अनाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चूहों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, आइए इस विषय पर बात करते हैं। और जानकारी दे रहे हैं श्री एस एन मोरे, आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानती ही है कि अब रबी फसल कटाई के बाद सबसे प्रमुख कार्य होता है अनाज के भंडारण का। अनाज का भंडारण ऐसी जगह किया जाना चाहिए जहां पर उसे नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जैसे कि आप सभी जानती है कि चूहे हमारे भंडारित अनाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो चूहों का नियंत्रण कैसे किया जाए इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है श्री एस एन मोरे। तो मोरे जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत है। राम राम
1: राम राम किसान भाइयों सभी को मेरे तरफ से राम राम।
0: मोरे जी। हमारे किसान भाई अनाज का भंडारण करते हैं
1: हाँ
0: और वहां पर चूहे अपने अनाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: सही है।
0: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूहा किस तरह और कितना नुकसान हमारे किसान भाइयों के अनाज को पहुंचाता है।
1: देखिए मानेकर जी, चूहा से हमारे खाद्यान्न, हमारे फल सब्जी, हमारे कपड़े और कृषि से जुड़ी हुई विभिन्न सामग्री, जैसे अपने सिंचाई के पाइप है, हमारे स्प्रेस वगैरह पाइप के हैं और पार्ट्स है, कपड़े, सभी को खाद्यान्न के साथ साथ नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी जब बात खाद्यान्न की हो रही है तो एक अनुमान के बतौर यह पाया है कि हमारे देश में कुल भंडारित अनाज का 30 से 35 लाख टन चूहों के द्वारा नुकसान होता है। यदि हम देखते हैं कि यदि कहीं 10 क्विंटल अनाज नुकसान हुआ है, तो जैसे मान लो बोरे में से नाश होना, चिड़िया के द्वारा खाना, कीट बीमारी के नुकसान होना, तो उसका 1/4 केवल चूहों के द्वारा नुकसान होता है, जो कि हमारी मेहनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि चूहों के द्वारा नष्ट किया जाता है।
0: मुरे जी, अब हम कैसे पहचाने कि भाई नुकसान चूहों से ही हुआ है।
1: किसान भाई से मैं यही कहूंगा कि जो नुकसान हुआ है तो उसको, जैसे गड्ढे हैं खलियान के पास जहां फसल अपने एकत्र की है या जहां भंडारित अनाज है, वहां पर यदि गड्ढे मिलते हैं तो हम उनको कैसे पहचाने कि यहाँ पे चूहा का निवास है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूंगा कि गीली मिट्टी लेकर के उन बिल को उन गड्ढों के मुंह पर रख देवे। आज यदि शाम को हम यह काम करते हैं कि उन बिलों को गीली मिट्टी से हमने मुंह को बंद कर दिया है, फिर हम दूसरे दिन वापस उसका निरीक्षण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यदि वहां चूहा है तो मिट्टी को हटा करके वहां पर उसका आना जाना चालू कर देता है। तो हम यह तय कर लेते हैं कि इस बिल में, इस गड्ढे में चूहे का निवास है, अर्थात गीली मिट्टी लगा दो। और यदि दूसरे दिन हम देखेंगे कि मिट्टी हट गई है तो वहां पर हम जान लेंगे कि चूहे का निवास है।
0: अब मान लीजिए कि हमें मालूम हो गया कि अब वहां पर चूहे निवास करने लगे और वो हमारे अनाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो
1: हाँ
0: अब बात आती है कि उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इस बारे में बताएं।
1: बिल्कुल, मैं यही चाहूंगा कि किसान भाइयों जब तय कर लें कि यहाँ पर चूहा है और हमारे खाद्यान्न को, हमारी कटी हुई फसल को
0: नुकसान पहुंचा
1: या
0: रहे हैं।
1: हाँ अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब उन्हें दो प्रकार के उपाय करना चाहिए, एक रासायनिक है और एक जैविक है। रासायनिक विधि में यह है कि जिंक फास्फाइड नाम की एक दवा आती है, इसका उपयोग करते हैं। और जैविक में हम बेसरम की पत्ती और धतूरे का फल, इनको, इनके जैसे 5 किलो धतूरे की पत्ती ले लेते हैं, बेसरम की पत्ती ले लेते हैं, 2 नग धतूरे के फूल फल को लेकर के उबाल लेते हैं। इस उबले हुए पानी में, उबलते पानी में गेहूं या चना को डाल देते हैं। जब यह गेहूं चना पक जाता है तो उन पत्तियों को निकाल करके, अलग करके गड्ढे में गाड़ दो और जो उबले हुए दाने हैं उनको सूखा करके उनके बिल के पास गुड़ या शक्कर मिला करके रख देते हैं, जिससे जहरीला हो जाता है। इसी तरह से रासायनिक दवा है तो जिंक फास्फेट बाजार में आसानी से मिलता है। हम मानेकर जी 100 ग्राम आटा ले लेते हैं,
0: जी
1: इसमें 100 ग्राम आटे में 50 ग्राम गुड़ दे देते हैं और 5 से 10 ग्राम जिंक फास्फाइड ले लेते हैं, इसको सबको एकत्र करके छोटी छोटी गोली बना लेते हैं, ठीक है।
0: जी
1: यह अपना मतलब जहरीला विषाक्त उनका तैयार हो गया है भोजन।
0: जी
1: परंतु इसके पहले अपने को चूहे के लिए, चूहे बहुत चतुर प्राणी होता है, तो उसके लिए एक दो दिन उनको पहले मीठा भोजन देना चाहिए, केवल बिना जहर का,
0: हाँ,
1: ठीक है ना।
0: मतलब
1: पहले
0: उनको लालच देने के लिए।
1: हाँ, उनको लालच देने के लिए फल्ली है, गुड़ है, आटा में मिला करके एक दो दिन देवे, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे अच्छा भोज्य मिलता है। इसके एक या दो दिनों के पश्चात में जो मैंने बताया कि भाई जिंक फॉस्फेट डालना है, तो वो गुड़ आटा तेल 10 ग्राम तेल ले लें, और 5 से 10 ग्राम जिंक फॉस्फेट और 100 ग्राम आटा, और इसका लोई बना करके, छोटी छोटी टिकिया बना करके बिल के पास में रखें।
0: मतलब पहले 2-3 दिन पहले अच्छा भोजन दो उनको,
1: हाँ
0: और फिर बाद में कुछ दिन
1: हाँ
0: बाद में उनको जो विषाक्त युक्त भोजन जो है वो
1: हाँ
0: देना चाहिए, है
1: हाँ विषाक्त
0: ना।
1: भोजन बाद में देना चाहिए।
0: मान लीजिए चूहों ने वो विषाक्त युक्त भोजन खा लिया
1: हाँ
0: और वो मर गए, तो
1: हाँ
0: फिर अब ये मरे हुए चूहों का क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो बदबू आएगी वहां पे और
1: हाँ
0: परेशानी
1: बहुत
0: होगी।
1: ही ध्यान देने की जरूरत है किसान भाइयों, क्योंकि प्रायः ये देखने में आता है कि हमारे किसान भाई हमारे घरों में, खेत में, खलियान में, पशुगृह में, जहां पर भी हम दवा रखते हैं और चूहे मर जाते हैं, तो उनको खुली जगह में फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन खुली जगह में रखने से एक तो हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, जिसकी वजह से मानव समाज, हम, हमारे बच्चे बीमारी का डर बना रहेगा, हमारे पशु जो कि हमारा ही धन है वह भी प्रभावित होगा, और जैसे हमारे पालतू पक्षी है जैसे मुर्गी वगैरह है, बदक है, यदि ये खा लेते हैं, कुत्ता है, तो भी वो जहर उन पे,
0: असर करेगा।
1: हाँ, उन
0: हाँ
1: पे असर करेगा, यहाँ तक कि मृत्यु भी उनकी हो सकती है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूंगा कि इन चूहों को, मरे हुए चूहों को एकत्र करें और जमीन में अपने घर से दूर गड्ढा करके उनको गाड़ देवे, ताकि हमारा वातावरण प्रदूषित न होए।
0: और मोरे जी, हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई और भी अन्य उपाय है मतलब चूहा नियंत्रण के?
1: हाँ, चूहा नियंत्रण के उपाय जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने तो नहीं मतलब उनको साबित किया है या नहीं पुस्तकों में, लेख में नहीं दिया है, पर हमारे किसान भाई अपनाते हैं, जैसे कि कुछ एरिया में देखा है कि चूहों के बिल के पास उनके बिल को राख से बंद कर देते हैं, जो बिल है, गड्ढे हैं,
0: जी
1: उनको राख लगा दी, तो जब चूहा अंदर प्रवेश करेगा तो राख उनकी आंखों में जाएगा,
0: अच्छा,
1: जिसकी वजह से वो अंधे हो जाते हैं,
0: देख
1: तो
0: नहीं पाते।
1: देख नहीं पाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, और जब चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो एक न एक दिन कमजोर होकर के वो मर जाते हैं, अर्थात हमारा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा उपाय यह है कि अपन सीमेंट को लेकर के, सीमेंट, आटा और गुड़ या शक्कर लेकर के भी इनकी टिकिया बना के उनको चूहे के बिल के पास रखेंगे, और यदि चूहा खाता है तो जो सीमेंट है तो उसके आमाशय में जाकर के जमा हो जाता है, जो पाचन क्रिया से मतलब जो बाहर एक वो नहीं होगा, है ना, उसके माध्यम से वो नहीं निकलेगा, तो वो जो सीमेंट एकत्र हो जाएगा, इसकी वजह से श्वास लेने में दिक्कत जाएगी और वो चूहा मर जाता है। और खेतों में अपने को जहाँ फसल है या अपना खलियान है वहां पे खुटी गाड़ दे, जहां पर कि रात में उल्लू बैठता है और चूहा ज्यादातर रात में ही नुकसान पहुंचाता है, तो खेत खलियान में यह उपाय कारगर है कि उल्लू उन पर आक्रमण करके चूहों का भक्षण कर लेता है।
0: मोरे जी, एक उपाय मेरे ध्यान में भी आ रहा है कि
1: हाँ
0: हमारे जो किसान भाई है, अगर उनने अनाज अगर घर में भंडारित करके रखा हुआ है
1: हाँ
0: तो वे
1: हाँ
0: वहां पर पिंजरा लगाते हैं पकड़ने के
1: हाँ
0: लिए, चूहे पकड़ने के लिए,
1: बहुत अच्छा, सही है।
0: तो और पकड़ के जब उसमें चूहा फंस जाता है तो उसको ले जाके वो बाहर कहीं छोड़ दे सकते हैं।
1: हाँ, नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़ देंगे तो वह अपना नहीं तो अपने दूसरे घरों में हमारे दूसरे किसानों का नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि हमारे खेत खलिहान में वह वापस आ जाता है। किसान भाई को मानना होता है कि हम दूर छोड़ दिए, पर दूर छोड़ा आखिर तो वो जाएगा कहाँ,
0: कहीं ना कहीं तो आएगा।
1: कहीं ना कहीं तो आएगा, वो अपना
0: हाँ
1: नुकसान पहुंचाएगा ही।
0: अच्छा, मोरे जी, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई जो भंडार गृह बनाते हैं
1: हाँ,
0: वो कैसे होना चाहिए?
1: किसान भाइयों से मैं यही कहूंगा कि भंडार गृह पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए, ताकि हमारी मेहनत का जो फल है, प्रतिफल है, हमें पूरा मिले, उसके पूरे दाम मिले, अन्यथा चूहों से नुकसान होने पर हमारे को उस फसल का उस उत्पादन का पूरे मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए भंडार गृह मजबूत हो, सीमेंट का हो तो बहुत अच्छा है, समतल हो और कहीं पर भी गैप जो खाली जगह न रहे। और तीसरी बात है कि जहाँ दरवाजा रहता है, दरवाजा और सतह जो नीचे उसके बीच में खाली जगह न हो। खाली जगह रहने पर जो गैप रहता है उसमें से चूहा आना जाना कर लेता है, तब हमारा हमारे को नुकसान, हमारे खाद्यान्न को नुकसान पहुंचाता है।
0: इसके
1: और
0: अलावा
1: जो दरवाजा है उस पे एक 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लगा दें, क्योंकि चूहा को हम देखते हैं कि जो अपने लकड़ी के दरवाजे रहते हैं तो उनको खुरच लेते हैं,
0: हाँ
1: धीरे
0: कुतर
1: धीरे
0: लेते हैं।
1: प्रयास रात में वो खुरच लेते हैं और एक दिन वो इतने जगह बना लेते हैं कि उसका आना जाना आराम से हो जाता है। तो यदि हम लोहे की पट्टी लगा देते हैं 15-20 सेंटीमीटर चौड़ी और अपने जो लंबाई चौड़ाई जो है उसकी उसके हिसाब से अपने दरवाजे के हिसाब से, और ये साइज की जो चौड़ी पट्टी लगा देते हैं लोहे की, तो चूहे को खुरचने का और नुकसान कर अंदर आने का कोई
0: मौका
1: मार्ग
0: नहीं,
1: नहीं बन पाता,
0: हाँ
1: कोई मौका
0: नहीं
1: नहीं
0: मिल
1: मिल
0: पाता।
1: पाता है।
0: तो मोरे जी, आपने हमारे किसान भाइयों को चूहा नियंत्रण कैसे करें, उनसे अपने अनाज का बचाव कैसे करें, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी के।
1: जय राम जी की।
0: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे चूहों का नियंत्रण कर अनाज भंडारण करें, इस विषय पर श्री SN मोरे से की गई ये बातचीत। और किसान भाई, एक छोटी सी चर्चा हम ऐसी भी करते हैं कि देखिए, अब उस गर्मी के दिन चल रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद अब किसान भाई खरीफ की फसल बोने की तैयारी करेंगे। यानी कि देखिए, अभी मई माह चल रहा है, आज 24 तारीख हो गई, अब इसके बाद में नवतपा 9 दिन का, और उसके बाद मृग नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर मृग नक्षत्र में बरसात अगर हो जाती है तो किसान भाइयों को फसलें जो है वो अनाज उत्पादन अच्छा होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो भी, ताकि हमारे किसान भाइयों को फायदा हो। तो अब अगले माह में अगर पानी जल्दी आ जाता है, बरसात जल्दी हो जाती है, अगर मृग नक्षत्र में बरसात होती है, तो किसान भाई अपने खेतों में खरीफ फसल बोनी कर सकते हैं। तो अब बोनी अपने हमको खरीफ की करना है, आप समझिए 8-10 दिन, 15 दिन बचे हैं। बरसात जल्दी अगर हो जाती है तो 15 दिन के बाद में बोनी हमको करना है, तो जरूरी है किसान भाइयों की उसकी तैयारी भी हम अभी से करके रख लें, चाहे खाद हो, बीज हो, ये सब प्रकार की तैयारी हमको अभी से करके रखना जरूरी है। बीज की तैयारी आपको करना है, चाहे आप सोसाइटी के माध्यम से ले रहे हैं, चाहे अपने घर का बीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो अगर घर का बीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसकी छटाई बिनाई ये आप करके रख लें। और अगर आप मार्केट से भी बीज लेकर आ रहे हैं तो उसको भी लेकर आप अपने घर पर ला के रख लें, सोसाइटी के माध्यम से ले रहे हैं तो भी आप ले लें। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही किसान भाइयों की जो खरीफ की बोरिंग तैयारी है उनको उस पूरी तैयारी को अभी से हमको करके रखना चाहिए। ये अपने मन में पूरी रूपरेखा बना के रखना है आपको कि हमको कौन सी फसल बोना है, कौन सा बीज बोना है, किस प्रकार से बोना है, ये सब चीज़ें आप अपने मन में अभी से तैयार करके रख लें। खाद की व्यवस्था बना के रख लें, ताकि इन समय पर कई बार ऐसा होता है कि जब आपको खाद की आवश्यकता होती है तब आपको खाद मिल नहीं पाता है मार्केट में, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अभी से पूरी व्यवस्था बना के रख लें। किसान भाइयों, खरीफ बोनी की तैयारी आपको करना है और समय पे करना है, क्योंकि अगर जल्दी बारिश हो जाती है, वैसे हमारे जो कृषि विशेषज्ञ है वो सलाह देते हैं कि लगभग 4 इंच बारिश होने के बाद किसान भाइयों को बोनी करना चाहिए, लेकिन कई जगह देखने में आता है किसान भाई जैसी पहली बरसात तेज हो जाए तो किसान भाई बोना शुरू कर देते हैं। जो भी हो किसान भाइयों, तैयारी आपको करके रखना है। जिन किसान भाइयों खेत अभी खाली पड़े हैं और उनके पास समय है तो अपने खेत की मिट्टी की जांच भी अवश्य करवा लें, इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है और आगे जो फसल आपको बोना है उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आप अपने खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, तो उससे होगा ये कि संतुलित मात्रा में उर्वरक आप देंगे और आपको खेती में लागत भी घटेगी। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ग्राम सेलगांव के लोक कलाकारों द्वारा गाया गया ये लोक भजन।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम सेलगांव के लोक कलाकार द्वारा गाए गए लोक भजन। और इस लोक भजन के साथ ही संपन्न होता है आज का अपना कार्यक्रम ग्राम सभा। अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त प्रकाश मानेकर को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी का। ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब वक्त हो चुका है शीर्षक संगीत कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम। आज कार्यक्रम का शीर्षक है नजर। और कार्यक्रम की शुरुआत भी साल बाद इस फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की।

और अब आइए सुनते हैं एतबार फिल्म का ये गीत, आवाजें भूपिंदर और आशा भोसले की।

इस गीत के साथ ही शीर्षक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, कुछ ही पलों में होगा हमारा अगला समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
1: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा की किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है, वो चर्चा है जल जीवन मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गाँव में।
1: अब भी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए ना।
3: अभी नल लगे तो अच्छा सिक्योर करे सरकार ने।
4: जो टंकी से नल का पानी हो गया बढ़िया हो गया,
3: नल लगी।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। बड़े श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
5: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टूटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह,
6: जब हमने काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर ग्राम क्षेत्र में थे, और आज हमने जो जितनी पात्र जनसंख्या है जो जेलिंग के माध्यम से पूरा करती है लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता यह है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार जिसके को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों की चारों तरफ कुंडी, बावड़िया, नए जल संस्था का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संस्थाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉक डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये

0: में बन गई है, उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना लेगा, और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना लेगा तो उस पानी से हम गाँव में 1200 लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापिस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापिस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन काम करेंगे।
1: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहाँ जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
2: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गांव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था। लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है। विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंडिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के सपने को मिलकर साकार करें।
1: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
3: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने

0: सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
1: कि हमारे वार्ड क्रमांक एक में जो हमारे को जलकर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक एक के 1200 रूपये आ गए हैं, वार्ड क्रमांक दो में 790 रूपये आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक तीन में 2780 रूपये आ गए हैं।
2: सभी को संदेश दे रहे हैं कि जलकर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी को वेस्टेज नहीं जाने दें इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
3: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गांव में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहां पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुंचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करें।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे। हम नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं। अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजबूत पहला से जलाते भी नहीं थे, पानी में दम भर हो जाते हमारे, पानी बहुत व्यस्त हो जाते। पहले रात पानी हो गया तो नल चालू करो, पानी भरो और मजदूरी भी चले जाओ।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम नगर विकास की में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की।
1: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साज और आवाज़।

रूप कुमार राठौड़ की इस साज में आइए बोल सुनते हैं शकील आजमी के और आवाजें। साधना सरगम और उदित नारायण की।

इस गीत के साथ ही साज और आवाज कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिला

0: अधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध

परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टी हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। दोस्तों आज जाने माने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म पेइंग गेस्ट।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनूं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

सोलवां साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार।

0: तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

बजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मैसूर सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जय किशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरों के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

सन 2000 को निमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमीडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देशभर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
2: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

आज कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं मेरे जीवन साथी फिल्म के सभी गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। आवाज किशोरदा की।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। अगला गीत आइए सुनते हैं इसी फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की।

मेरे जीवन साथी फिल्म के सभी गीत आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। 1972 में बनी इस फिल्म में निर्देशक थे रविकांत नगेच, रमेश पंत, लेखक थे पटकथा प्रेम मानिक्की, निर्माता थे विनोद शाह, हरीश शाह, मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार और नासिर हुसैन, संपादक विमल राय, संगीतकार आर डी बर्मन। और ये फिल्म बहुत प्रचलित हुई उन दिनों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में।

अगला गीत सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम है एक ही फिल्म से, आप सुन रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म के सभी

इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं ए हरिहरन।

ए हरिहरन के गाय इस गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।

0: मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका की विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated.